ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की पहली प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम

0: यूनिट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमरीका फोरम को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4थे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल।

0: سمعتها.
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 32।

शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिवजी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा। ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। आज का सुविचार, किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, ये जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनुराधा पौडवाल के गाए इस भजन के साथ।

श्रोताओं, ये भजन आप सुन रहे थे हरिओम शरण और नंदिनी शरण के स्वरों में। आइए आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह और साथियों का गाया ये भजन।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: श्रोताओं, लता मंगेशकर के गए इस भजन के साथ ही

संगीत का कार्यक्रम वंदन यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत सुनवा रहे हैं आपको फरियाद फिल्म से। गीतकार है केदार शर्मा, संगीतकार है स्नेहल भटकर और इस गीत को गाया है सुमन कल्याणपुर ने।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रात और दिन फिल्म का ये गीत। गीतकार है शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और अमन्ना डे ने।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं प्यार का मौसम फिल्म से ये गीत, जिसको गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, बोल है मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म साथी से। इसको गाया है मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने। संगीत नौशाद का है और बोल है मजरू सुल्तानपुरी के।

श्रोताओं, साथी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियो वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर।

का सूर्य नगरी चैनल। सुबह के 7 बजे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। जैसा कि आप जानते हैं कि जून जा रहा है और मानसून आ रहा है। चिलचिलाती गर्मियों के दिन अब लदने वाले हैं और हम ये दुआ करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि मानसून की अच्छी बारिश राजस्थान और पूरे देश को नसीब हो।

कोई भी तेरा हो सकता है, कभी तूने अपनाया ही नहीं। आप गीत सुन रहे थे ये, और फिल्म थी खून भरी मांग। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप कुछ बातें कुछ गीत, और हम बात कर रहे थे मानसून के आगमन की। श्रोताओं, जैसा कि वैज्ञानिकों ने अनुमान किया है कि अलनीनों के चलते बरसात थोड़ी कम होगी, तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि वर्षा जल संरक्षण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के आप पूरे प्रयास करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि कम वर्षा में भी हम पानी को अच्छे से सहेज सकें।

श्रोताओं, पश्चिमी राजस्थान में खेती को मानसून का जुआ कहते हैं। ये स्थितियाँ हालांकि काफ़ी हद तक बदल चुकी है। नलकूप पर बढ़ती निर्भरता और साथ ही साथ इंदिरा गांधी नहर के आने से यहाँ पर बरसाती खेती के अलावा साल में 3 से 4 फसलें भी ली जाती है। ऐसे में वर्षा का जल है वो हमारे लिए बोनस है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि जब बरसात हो तो इस बोनस को सही से इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए भी इसको सहेजने के लिए इसको बहने से रोकें और कोशिश ये करें कि ये भूमिगत जल जल के रूप में स्टोर होता रहे।

श्रोताओं, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में अब तक आप सुन चुके हैं वारिस, सदमा, खून भरी मांग, तेजाब, साहिब, मैंने प्यार किया और प्यार झुकता नहीं फिल्म के कुछ गीत। कार्यक्रम जारी है और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। ये गीत आपके लिए हम लेके आए हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली।

जी आशुताओं, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। और जो कार्यक्रम आप सुन रहे थे उसका नाम कुछ बातें कुछ गीत है। कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेज़ी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा

0: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक

0: अमृत। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जहरा और हो जहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रूपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन

0: करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सहित। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह का, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
3: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट एंड ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 47,000 करोड़ रूपीज इन ओडिशाज मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट टुडे। Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors.

हंसते हुए अपने दिन की शुरुआत करिए, हर ओर सुंदर मुस्कान का प्रभास करिए। खुशियों से खिल उठती है जिंदगी हमेशा, इसलिए सदा खुश रहने का प्रयास करिए।

0: इन्हीं शुभकामनाओं के साथ स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
1: दोस्तों मीता जी की इन्हीं खूबसूरत सी बातों के साथ अब मिलवाते हैं आपको नमस्कार की टीम से, परिचय करवा देते हैं आपको। एचपीटी ट्रांसमीटर पर हैं विक्रम सिंह भाटी और कैलाश चंद्र सोलंकी।
0: और एफएम ट्रांसमीटर पर हैं सीएल सोनी।
1: कंट्रोल रूम से साथ मिल रहा है पारसपुरी गोस्वामी का।
0: कंसोल पर प्राइमरी चैनल पर हमारे साथ हैं कल्याण विश्नोई।
1: वहीं एफएम का कंसोल संभाल रही है उद्घोषिका हिना खान।
0: नमस्कार कार्यक्रम की प्रस्तुति है राजेश लामरोड़ की।
1: और नमस्कार की पूरी टीम के साथ मैं हूं कार्यक्रम की होस्ट चंद्रकला सुथार
0: और मैं हूं मीता मुल्तानी।
1: दोस्तों टीम परिचय के बाद आइए मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: मित्रों, जीवन में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जीवन एक संघर्ष है, चलता ही रहेगा। कभी अपने जीने का अंदाज न खोना।
1: जी हाँ मीता, ज़िंदगी के बारे में अक्सर हम बातें करते रहते हैं कि ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए, वैसे जीना चाहिए। आखिर ज़िंदगी को जीने का सलीका क्या है? अक्सर हम ये सवाल खुद से पूछते हैं। भागदौड़, तनाव और भविष्य की चिंता में हम आज को जीना भूल जाते हैं। हाल ही में मुझे मीता एक लेखक का अनुभव पढ़ने को मिला जो अपनी उम्र को महज एक आंकड़ा मानते हैं। वे कहते हैं, जो लोग पूछते हैं कि इस उम्र में अकेले यात्रा क्यों कर रहे हैं, तो मैं बस मुस्कुरा कर कहता हूँ, मैं अभी जवान हूँ। और उनकी सादगी भरी दिनचर्या ही उनकी ऊर्जा का राज है मीता। और घर का बना सादा भोजन, भूख से थोड़ा कम खाना और निरंतर पढ़ने लिखने का शौक, पर उससे भी बड़ी सीख मीता जी उन्होंने अपनी पारिवारिक जीवन में दी है।
0: अच्छा,
1: वे कहते हैं कि आज मैं परिवार में सलाह नहीं देता, बल्कि जो निर्णय बच्चे लेते हैं उन्हें अपना मान लेता हूँ। इसी वजह से मुझे परिवार में सम्मान मिलता है, वही मेरे जीने की ताकत भी है। 85 की उम्र में भी आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति का बरकरार रहना अनुशासन का ही नतीजा है मीता। और ज़िंदगी को भरपूर जीने का मतलब भी तो यही है कि सुकून से खाना, खुश होकर चलना और अपनों के साथ प्यार से रहना।

0: मित्र, जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तक हम अपनी पुरानी आदतों के साथ कंफर्ट जोन में कैद रहते हैं, तब तक हम अपनी क्षमताओं से अनजान भी होते हैं। अपनी वास्तविक पहचान को जानने का सफर इस दायरे के पार ही तो शुरू होता है, क्योंकि कंफर्ट जोन में हमें कोई चुनौती नहीं मिलती है, कोई डर नहीं सताता है। लेकिन सच तो यही है ना कि इस दायरे के भीतर हम सिर्फ वक्त गुजारते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। जब हम इस ठहराव को छोड़कर बाहर कदम रखते हैं, तो वह केवल एक बदलाव नहीं होता, बल्कि खुद की खोज की एक शुरुआत होती है।
1: इसीलिए कहा गया है कि आराम के दायरे से बाहर निकलना वास्तव में खुद से मिलने जैसा है, और एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए इस आरामदायक पिंजरे से बाहर निकलना भी जरूरी है। और यह भी सच है कि कठिनाई ही हमारी असली पहचान को बाहर लाती है, और जब शरीर असहज होता है तब हमारा मन जागता है। मन के तो कहने ही क्या, हमारा मन हमेशा नई चीजें, नई काम, नई बातों को ढूंढता रहता है। और कहते भी है ना कि मन के हारे हार है, मन
0: और
1: के
0: मन के
1: जीते
0: जीते जीत।
1: जीत।

0: दोस्तों, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें और मुस्कुराते रहें।
1: बिल्कुल मीता, और मन के तो कहने ही क्या, हमारा मन हमेशा नई चीजें और नए काम, नई बातों

0: को ढूंढता रहता है। अगर हम मन के कहे अनुसार चलेंगे तो यह हमें भटकाता रहेगा, क्यों? सही बात है ना।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर इसे अपने नियंत्रण में रखेंगे तो यह हमसे वो करवा सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
1: अच्छा।
0: जैसा ठहरा हुआ जो पानी होता है वो साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन सही और सटीक फैसले लेता है। इसलिए कहा गया है कि हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा ठहरना भी जरूरी होता है।

0: मित्रों, मन और दामन हमेशा साफ रखें, क्योंकि मन से मान मिलेगा और दामन से सम्मान।
1: बिल्कुल, अक्सर हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं अमिता, और जब वो पूरी नहीं होती है तो दुख होता है। और मस्त मगन इंसान होता है वो अपनी खुशी की चाबी हमेशा अपने पास रखता है, दूसरों को नहीं देता है।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के 9,44,00,000 किसानों के लाभान्वित होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए डिजी दुकान ऐप का शुभारंभ किया और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। वे इस अवसर पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रदेश में विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली के सुमेरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव में शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 2,000 रूपये की 3 किस्तों के जरिए 6,000 रूपये सालाना की आर्थिक सहायता दी जाती है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के लगभग 700 बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के साथ सीधा संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीएलओ के जमीनी अनुभवों, चुनौतियों और सुझावों को गहराई से समझना है। इस दौरान मतदाता सूची अपडेशन और निर्वाचन जागरूकता में उनकी भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि राजस्थान ने एसआईआर के दौरान 98% तक शानदार मैपिंग कर देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 178 राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी किए। इस सूची में कई जिलों के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इन तबादलों में सभी अधिकारियों को बिना कार्य ग्रहण काल का उपयोग किए तुरंत प्रभाव से अपने नए पदों का कार्यभार संभालने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कल आयोजित होने वाली री नीट परीक्षा को देखते हुए 7 परीक्षा स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय किया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने आकाशवाणी को बताया कि विद्यार्थियों की सुगम आवाजाही के लिए रेवाड़ी बठिंडा, बाड़मेर भगत की कोठी, रेवाड़ी जयपुर जोधपुर सांगानेर और बीकानेर डहर के बालाजी जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेनें दोनों दिशाओं में चलेंगी। इसके अलावा भगत की कोठी से जयपुर और मदार से रेवाड़ी के लिए एक तरफा परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी रेलगाड़ियों का विभिन्न छोटे बड़े स्टेशनों पर ठहराव किया जाएगा।
1: 21 तारीख को होने वाली नीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एनडब्ल्यूआर ने व्यापक तैयारियां की हैं। इसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्टूडेंट के मूवमेंट और राजस्थान के एग्जामिनेशन सेंटर्स को ध्यान में रखते हुए उसी डायरेक्शंस में ये ट्रेनें प्लान की गई हैं। इसके अलावा स्टेशन पे अदर तैयारियां भी की गई हैं। स्टेशन पे लोगों को डेप्यूट किया गया है ताकि स्टूडेंट्स को अपने सेंटर पे पहुंचने के लिए वो गाइड कर सकें और स्टूडेंट आराम से अपने सेंटर पे पहुंच सकें।
0: प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद और उनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में हुई राज्य उन्नति की बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, चिकित्सा और सड़क जैसी जन सुविधाओं से जुड़े किसी भी काम में प्रशासनिक शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आगामी मॉनसून के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को नालों की सफाई, सड़कों के पैचवर्क और मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के व्यापारियों को एक बड़े डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए ओएनडीसी डिजि दुकान ऐप शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित जयपुर

व्यापार महासंघ के कार्यक्रम में इस ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये नई डिजी ऐप दुकान पहल छोटे दुकानदारों, किराना व्यापारियों और उद्यमियों को डिजिटल वाणिज्य से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारी विभिन्न ब्रांड्स, वितरकों और थोक विक्रेताओं से जुड़कर अपनी खरीद और आपूर्ति प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी

0: प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बना सकेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सदियों से व्यापार और उद्यम की भूमि रहा है। आज देश दुनिया के हर कोने में राजस्थान के व्यापारी अपनी पहचान बना रहे हैं।
1: और इस बात की मुझे खुशी होती है कि देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी राजधानी किसी भी बड़े शहर में जाता हूं, दुनिया के किसी देश में जाता हूं, तो वहां मेरे प्रवासी राजस्थान भाइयों को देखता हूं, मन प्रफुल्लित हो जाता है कि वो राजस्थान की मिट्टी की खुशबू वो व्यापारी पूरी देश और दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के मस्तिष्क को गर्व से ऊंचा कर देते हैं, जो वहां जाकर के हम सुनते हैं कि इस शहर में या इस देश में सबसे बड़े व्यापारियों में नाम राजस्थान के 4, 6, 10 होते हैं, ये गर्व से ऊंचा हो जाता है।
0: सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए। श्री राठौड़ को ये दायित्व वर्तमान अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू की सेवानिवृत्ति के बाद दिया गया है। नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक वे इस पद का कार्यभार संभालेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आयोग में 2 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की है। इनमें भीलवाड़ा के एमएलवी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संतोष आनंद और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा के प्रदेश संगठन मंत्री डॉ दीपक कुमार शर्मा शामिल हैं। इन दोनों नए सदस्यों का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक निर्धारित किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल प्रदेश भर में मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला ब्लॉक और उप ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। आयोजन की इसी कड़ी में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से जयपुर स्थित जंतर मंतर पर कार्यक्रम होगा। इसमें 18 देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे। संस्थान के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि संस्थान द्वारा योगा डे 100 दिवसीय काउंटडाउन के तहत देश भर में 30 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से सेना पुलिस और विभिन्न संस्थानों में योग और तनाव प्रबंधन का प्रचार प्रसार किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 9,44,00,000 किसान लाभान्वित होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारोबारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए डिजिदुकान ऐप का शुभारंभ किया। और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: इनमें से केवल 23 ही जीवित बचे, बाकी दम घुटने, गर्मी और भीड़ के कारण मारे गए। हालांकि यह घटना ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास में बेहद भावनात्मक और प्रचारित मोड़ बन गई, किंतु इसने कंपनी को सैन्य जवाबी कार्यवाही के लिए प्रेरित किया था।
1: और साथ ही दोस्तों, विलियम चतुर्थ के निधन के बाद मात्र 18 साल की आयु में महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटेन का सिंहासन संभाला था। उनका शासनकाल ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े विस्तार का गवाह बना था।

प्रादेशिक समाचारों के बाद आपका पुनः स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। श्रोताओं, हर दिन अपने भीतर इतिहास की अनगिनत कहानियां समेटे होता है। 20 जून भी ऐसा ही एक दिन है जो विश्व और भारत दोनों के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। यह दिन सत्ता परिवर्तन, सामाजिक आंदोलनों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और ऐतिहासिक उपलब्धियों का प्रतीक रहा है। तो जानते हैं क्या है आज के दिन का इतिहास? साल था 1756। कलकत्ता की ब्लैक होल ट्रेजेडी बड़ी ही प्रसिद्ध एक घटना है। 20 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव के विरोध में कलकत्ता पर हमला कर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। हमले के बाद ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों सहित कुल 146 लोगों को एक छोटे बिना खिड़की वाले बंद कमरे में डाल दिया गया, जिसे बाद में ब्लैक होल कहा गया। अगली सुबह तक

0: 1877 में 20 जून के दिन मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनल को लोगों के लिए खोला गया।
1: बिल्कुल, और मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, जब यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था। आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। दोस्तों,
0: वर्ष 1789, फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास में 20 जून 1789 का दिन बेहद निर्णायक रहा, जब तृतीय वर्ग के प्रतिनिधि, जिन्हें नेशनल असेंबली घोषित किया गया था, वर्साय के एक बंद इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। असल में जब उन्हें नियमित बैठक स्थल से बाहर कर दिया गया, तब उन्होंने वहीं इकट्ठा होकर यह ऐतिहासिक शपथ ली कि वे फ्रांस में नया संविधान लागू होने तक एकजुट रहेंगे और असेंबली को भंग नहीं करेंगे। इस टेनिस कोर्ट शपथ को किंग लुई 16वीं की राजशाही के विरुद्ध प्रतिरोध और फ्रांस में संवैधानिक लोकतंत्र की शुरुआत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
1: और जर्मनी के V2 रॉकेट का परीक्षण भी किया गया था, जो पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष तक पहुंचा था। आज के दिन
0: साल 1966, 20 जून के दिन यानी आज ही के दिन ब्रिटेन की मशहूर एविएटर शीला स्कॉट ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी मित्रों, जब उन्होंने अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर पूरा किया। उन्होंने यह सफर 27 अप्रैल 1966 को इंग्लैंड के लंदन से शुरू किया था और लगभग 31,000 मील की दूरी तय करते हुए 189 घंटों में कुल 34 देशों को पार किया। यह साहसिक यात्रा शीला ने पाइपर कोमांचो 2608 विमान में यह पूरी की और 20 जून को वापसी कर इतिहास रच दिया। यह कारनामा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के साथ साथ महिला पायलटों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। विश्वनाथन आनंद ने साल 1998 में आज ही के दिन व्लादिमीर कैमेनिक को हराकर 5वां फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट जीता था। और अब सुनते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों आज शनिवार है और शनिवार को सेगमेंट होता है शनिवार की रेसिपी। तो इस सेगमेंट में आज कौन सी रेसिपी है जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं? मीता लेकर आई है एक खास रेसिपी। आइए आप और मिलकर देखते हैं कौन सी रेसिपी हमारे साथ साझा कर रही है।
4: बिल्कुल चंद्रकला, धूप तो बहुत तेज है पर मौसम तो शरबतों का है ना। तो आज हम श्रोताओं के लिए लाए हैं कोकम मोइतो ड्रिंक। सुना है आपने कभी?
3: नाम तो सुना है।
4: बिल्कुल, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं।
3: बिल्कुल।
4: इसके लिए हमें सामग्री चाहिए, 100 ग्राम कोकम, 400 ग्राम शक्कर, 1 कप पानी, नमक, थोड़ा काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, सूखा पुदीना पाउडर, 1 नींबू का रस, 1 नींबू की स्लाइस सजावट के लिए, 4-5 ताजा पुदीना पत्ती, आइस क्यूब और सोडा वाटर। अब हम देखते हैं कि ये बनाते कैसे हैं। तो श्रोताओं, पेन और डायरी निकाल लीजिए और नोट करिए। सबसे पहले कोकम को 2 घंटे भिगो दें और ग्राइंडर जार में पीस कर छान लें। फिर पैन में शक्कर, पानी डालकर 1 उबाल आने पर कोकम का पेस्ट डालें और काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, सादा नमक, भुना जीरा पाउडर डालकर 20 मिनट तक इसको उबलने दें। फिर इसमें नींबू का रस डालें और फिर वापस 5 मिनट उबालें। पुदीना पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करके ठंडा करें और पूरा ठंडा होने पर साफ बोतल में भर दें। जब भी बनाना हो, सर्विंग ग्लास में नींबू स्लाइस, पुदीना पत्ती डालकर हल्का सा क्रश करें, आइस क्यूब्स और कोकम शरबत डालें, ऊपर से सोडा या स्प्राइट डालकर मिक्स करें और सर्व करें। तो लीजिए, तैयार है कोकम मोइतो ड्रिंक।
3: जी हाँ दोस्तों, और एक बहुत ही यह बेहतरीन और औषधीय फल होता है जो खासकर भारत के पश्चिमी तटीय इलाकों में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल खट्टे मीठे शरबत, कड्डी और मसालों के रूप में इसका किया जाता है। और इसके फायदों की बात की जाए तो पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छे से काम करता है और वजन घटाने में भी बहुत मददगार होता है, शरीर को भी ठंडा रखता है और दिल की सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है, त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो आप इस शरबत को जरूर बनाएं और इसका आनंद लें।

0: दोस्तों आइए अब मिलकर सुनते हैं एक भेंट वार्ता, समाज सेवी बंशीलाल भाटी से मीता मुल्तानी की बातचीत, जिसका विषय है मरीजों की निस्वार्थ सेवा। प्रस्तुति और संयोजन राजेश लामरोड़ का।
1: कहते हैं कि जो अपने लिए जीता है वह केवल अपना जीवन जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है वह अनेक जीवनों को संवार देता है। आज हमारे बीच ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने सेवा, संवेदना और समर्पण को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। समाज में बदलाव केवल बड़े संसाधनों से नहीं श्रोताओं बल्कि बड़े इरादों और नेक सोच से आता है। और ऐसे ही हमारे आज के अतिथि हैं जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से यह साबित किया है कि यदि मन में सेवा का भाव हो तो एक व्यक्ति भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। और आज के हमारे मेहमान हैं सुदर्शन सेवा संस्थान के महामंत्री श्री बंशीलाल जी भाटी साहब। तो सबसे पहले आपका आकाशवाणी के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है भाटी।
2: धन्यवाद।
1: भाटी साहब, आपने जो देश के लिए, समाज के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया है और आपका उद्देश्य भी यही है कि जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए कुछ किया जाए, तो ये समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरा जीवन ऐसा समाज के लिए समर्पित हो वैसा नहीं है। एक संस्थान जो सेवा के काम में लगा हुआ है, मेरे जीवन का भी उद्देश्य ऐसा ही सेवामय होने के कारण से मैं उस संस्थान के साथ जुड़ा हूं। सब मिलकर हमारे जो सामूहिक प्रयास हैं वे सेवा के प्रयास हैं। मैं उन सारे प्रयासों

0: का श्रेय स्वयं तक सीमित करना उचित नहीं समझूंगा। जिस प्रकार के मेरा जीवन की पृष्ठभूमि रही है, जिन परिवारों से मैं निकल कर आया हूँ, वहाँ अत्यंत अभाव जैसी परिस्थितियां हमारे सामने रही, इसलिए परस्पर सहयोग और सेवा, इसका महत्व हमने बचपन से ही महसूस किया।
1: बिल्कुल, जैसा अभी आपने बताया कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, नागौर से आपके आप मूल निवासी हैं और जोधपुर में आपने लंबे समय से वकालत का पेशा प्रारंभ किया और अपने पेशे के साथ साथ आपने टीचिंग का भी शुरुआत में कार्य किया है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं दी है, उसके बाद समाज के साथ आप जो जुड़े हैं, तो ये समाज सेवा के लिए आपको किसने प्रेरित किया?
0: ये काम मेरा बचपन से ही चला, मैं विद्यार्थी जीवन से ही, क्योंकि मेरा पारिवारिक, जैसा मैंने बताया, जीवन, मेरे पिताजी भी सेवा क्षेत्र में प्रारंभ से ही लगे हुए, उनमें जाना उस समय भी ये उनके जीवन का उद्देश्य रहा। जहाँ छुआछूत का इतना प्रभाव रहा, वहाँ मेरे पिताजी सब बस्तियों में जाकर और लोगों के बीच में, उनके बीच में बिल्कुल परिवार की तरह घुलना मिलना, ये उनका स्वभाव था। अच्छा। तो मुझे ये एक तरह से उत्तराधिकार में मिला हुआ काम है।
1: अच्छा,
0: जो
1: अच्छा।
0: मैं सेवा के क्षेत्र में लगा हुआ हूँ, तो इनका श्रेय वास्तव में मेरी प्रेरणा स्रोत जो भी हैं वो मेरे परिवारजन ही हैं, विशेष रूप से मेरे पिताजी, जिनको नागौर में पहलवान साहब के रूप में जानते थे।
1: अच्छा।
0: वो ही मेरे वास्तविक प्रेरणा स्रोत रहे।
1: बिल्कुल भाटी जी, तो ये जब होता है कि हमें जैसा संस्कारों में बीजारोपण आपके बचपन में मिलता है, वैसा ही आगे वृक्ष पल्लवित होता है, और वही चीज आपको बचपन से अपने घर में देखने को मिली अपने पिताजी में, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे और आज आप सुदर्शन सेवा संस्थान के माध्यम से मरीजों की जो एक निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। तो आपने इस क्षेत्र को ही क्यों चुना सर?
0: जब जोधपुर में एम्स की स्थापना हुई और बाहर से परिचित लोग जब जोधपुर में आते चिकित्सा के लिए, तब उनको यहाँ रुकने के लिए उचित इस प्रकार का स्थान, आने जाने के लिए एम्बुलेंस, इस प्रकार की सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती थी। ये हम सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने महसूस किया, तो एक संकल्प जगा कि एम्स के आसपास ही कोई भूमि हमको लेना चाहिए और उस पर ऐसा ठहरने के लिए भवन बनाया जाए।
1: अच्छा।
0: तो प्रारंभ में हमने वो भवन के लिए भूमि यह क्रय की और फिर समाज से ही उस पर संग्रह करके एक भवन जो हमने तैयार किया है, आज लगभग वहां पर 100 लोग एक समय में ठहर सकते हैं, इतनी ठहरने की व्यवस्था, और 11 एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को लाना ले जाना, और उसमें भी 3 जो है अत्याधुनिक और डेवलप्ड जो उसमें सुविधाएं हैं, आईसीयू एम्बुलेंस, ये हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से हम न्यूनतम लागत मूल्य पर उन लोगों को ये सेवाएं देने में सक्षम हो पा रहे हैं।
1: तो ये एम्स आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को ठहरने, उनके भोजन, उनके चिकित्सा सहयोग उपलब्ध कराने वाली ही संस्थान है आपकी ये सुदर्शन सेवा संस्थान
0: जी।
1: तो आपके साथ ये कारवा और भी कई लोगों का होगा, उनके बारे में भी बताइए।
0: लगभग इस समय हमारे संस्थान में 64 हम सदस्य हैं, 64।
1: अच्छा।
0: और अभी रिसेंट हमारी नई कार्यकारिणी भी फिर से चुनी गई है, तो 15 लोगों की हमारी कार्यकारिणी है। उनमें कई लोग हैं जो दिन भर प्रतिदिन 4 से 6 घंटा समय निशुल्क, अपना किसी प्रकार का भुगतान नहीं प्राप्त करते हैं, फिर भी वहां पर सेवाएं देते हैं। तो जो वेतनिक कर्मचारियों के अलावा जो ये समर्पण के माध्यम से जो लोग लगते हैं, उनकी सेवाएं ये अतुलनीय है, वो ही हमारे काम का आधार है, और उसी के बल पर हम लोग सफलतापूर्वक पिछले 3 साल से सभी लोगों को प्रभावी रूप से ये सेवाएं देने में सफल हो पा रहे हैं।
1: बहुत बहुत साधुवाद है आपको इन सेवाओं के लिए। भाटी साहब, आप जब ये समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े और आपके सुदर्शन सेवा संस्थान इस क्षेत्र में आगे आया, तो शुरुआत में आपको कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा, तो क्या ऐसी कोई समस्याएं या बाधा आई?
0: बहुत बड़े स्तर पर कोई बाधा आए ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। सामान्य असुविधाएं ये रहती हैं, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हमारे पास में इतनी सुदृढ़ कार्यकर्ता टोली रही, इतने सक्षम लोग रहे, और जो सीधा अपना समय नहीं लगा सकते थे उन लोगों लोगों ने भी आर्थिक रूप से और संपर्क के रूप में भी अपना संपूर्ण समर्पण इस काम के लिए दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो देव दुर्लभ हमारे पास में काम करने वालों की और समर्थकों की जो टोली रही, उसने सारे काम हमारे इतने आसान कर दिए। और ये 3 साल पहले जब हमने भवन में अपना काम प्रारंभ किया, उसके बाद 3 वर्षों में ही हमने वहां पर फिजियोथेरेपी का सेंटर, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी का आउटडोर लगाना

0: रोगों की जांच की व्यवस्था वहां करना, ये सब काम भी हमने प्रारंभ कर दिए। भोजनालय की व्यवस्था भी न्यूनतम लागत पर बहुत स्वास्थ्यकारी भोजन देना भी हमने हमारा भवन प्रारंभ होने के 15 दिनों के अंदर प्रारंभ कर दिया। तो कुछ तो ऐसा लगता है कि जब हम काम करते हैं सात्विक मन से तो शायद ईश्वर भी हमारे लिए सहयोगी की भूमिका निभाने लगे।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि एक व्यक्ति यदि सदमार्ग पर जाता है तो पीछे कारवां बढ़ता चला जाता है और पूरी टीम तैयार हो जाती है और वही चरितार्थ हो रहा है सुदर्शन सेवा संस्थान के साथ। आपने जो ये संस्थान से जुड़ के अपनी सेवाएं दी है, क्या इसमें कोई ऐसा यादगार अनुभव है जो आप हमारे साथ श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
0: वैसे तो हमारा प्रतिदिन का जो अनुभव है वह बहुत शानदार और उत्साहवर्धक रहता है। मैं महामंत्री के रूप में भी कई बार जो लोग यहाँ ठहर कर जाते हैं, क्योंकि मेरा पूरा समय वहाँ नहीं लगता है, तो जो लोग वहाँ रुक कर जाते हैं मैं उनके संपर्क नंबर लेकर और उनको फोन करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि यहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा। तो उनसे जो कुछ भी उद्गार हमको मिलते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी तरह से उत्साह का और प्रेरणादायी शक्ति का काम करते हैं। और सबसे बड़ा तो हमारे लिए ये है कि हमारे संस्थान के जो अध्यक्ष हैं रतनलाल जी गुप्ता, वो प्रतिदिन 5 घंटे कम से कम भी संस्थान में आकर बैठते हैं और सारे काम पर उनका इतना नियंत्रण है और उनके सुपरविजन में जो चल रहा है, तो हमारी एक तरह से केंद्रीय शक्ति ये हमारे संस्थान के अध्यक्ष हैं जो पूर्ण समर्पण के साथ प्रारंभ से ही इस काम के साथ लगे हुए हैं। मैं तो एक तरह से शोपीस हूँ उनके आगे, तो बाकी मुख्य काम ये उनका रहता है।
1: सर ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी एक दूसरे को अपना क्रेडिट देते हैं और सभी मिलकर काम करते हैं, और निस्संदेह जब टीम का लीडर अच्छा होता है तो टीम बहुत अच्छे से काम करती है और टीम वर्क जहाँ होता है वहाँ सफलता जरूर कदम चूमती है। तो आपके जो यहाँ आने वाले मरीजों को, उनके परिजनों को जो सुविधाएं मिलती है और उनके चेहरे पे जो मुस्कान आती होगी ना सर, वो संस्थान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती होगी।
0: निश्चित।
1: तो सर यदि कोई और व्यक्ति समाज सेवा शुरू करना चाहे या आपसे जुड़ना चाहे तो उसकी शुरुआत कैसे करे?
0: यदि सात्विक मन से कोई भी जुड़ना चाहता है तो हमसे संपर्क करता है, तो हम उनको यथोचित उनकी भूमिका इस संस्थान में भी, और मैं ये भी मानता हूँ कि सेवा के क्षेत्र में आज इतनी संस्थाएं काम कर रही है, उनमें से यदि 20% भी हम माने कि पूर्ण सात्विक भाव से वो लोग काम कर रहे हैं, हम उनके साथ भी संपर्क रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा संस्थान ही सभी को सेवाएं दे देगा ऐसा कभी संभव नहीं है, ये उचित भी नहीं है। चिकित्सा सहायता के लिए अनेक लोग कोई रक्त बैंक के रूप में काम कर रहे हैं, कोई अन्य प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराने के संदर्भ में काम कर रहे हैं, कोई निशुल्क चिकित्सा केंद्र चला रहे हैं, तो ये अद्भुत काम है और ये हमारी जो सनातन संस्कृति है जो दूसरों को सेवा देकर स्वयं को धन्य करने की है, ये भाव लेकर चलने का यहाँ इस देश में भाव है। तो सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है, क्षेत्रों की भी कमी नहीं है, बस अपना मन संकल्पित हो जाए तो वो हमसे भी जुड़ सकता है, नहीं तो अपने अड़ोस पड़ोस में जब देखेगा कोई भी व्यक्ति तुरंत उसको मिल जाएगा कि मुझे सेवा कहाँ करनी है और कैसे करनी है, प्रारंभ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती।
1: अच्छे शब्दों में आपने सभी को ये राह दी है कि कोई पर्टिकुलर कार्य का क्षेत्र नहीं होता है, यदि चाहे इंसान तो अपने पड़ोस से ही शुरुआत तो कर सकता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः, तो हम सभी यही चाहेंगे कि सभी प्रसन्न रहें, सभी निरोगी रहें, सभी खुश रहें। सर एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, जो कई बार उत्सुकता होती है हमारी कि सुदर्शन सेवा संस्थान के बारे में हमने सुना है कि वो प्लास्टिक मुक्त वातावरण के लिए भी कुछ स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाता है, क्या इस तरह की कोई योजना है?
0: हमारे पास में पिछले 7-8 सालों से हमने इसी संकल्प के साथ कि जोधपुर प्लास्टिक मुक्त बने, तो लगभग 15,000 भोजन के पात्र सेट जो हैं, अच्छा। वो हमने जन सहयोग से एकत्र किए हैं।
1: अच्छा।
0: और इस संकल्प के साथ जो व्यक्ति आता है कि मैं अपने यहाँ के जो कार्यक्रम है, हमारा जो भोजन का कार्यक्रम है, उसमें हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहते, उनको हम निशुल्क वे बर्तन देते हैं, वे आए और अपने बर्तन वहां से रिलीज करवा के ले जाएं, गिनकर अच्छा। और वापस हमको जमा करा दे, निशुल्क ये पूरी व्यवस्था रहती है, लाना ले जाना उनका रहता है। तो ये इसी प्रयोजन से किया गया कि हम यहां से प्लास्टिक को मुक्त करें, एक प्रारंभ हो कहीं ना कहीं से संकल्प कि हम लोग स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ने के लिए, प्लास्टिक मुक्ति का भी काम ये स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि प्लास्टिक है तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी एक स्वास्थ्य का ही मोर्चा है, इसीलिए इसको हमने प्रारंभ किया। साथ ही साथ हमने सुदर्शन सेवा संस्थान का जो भवन है हमारा, किशन भैया सेवा सदन, उसके पास एक खाली जमीन पड़ी थी जो
1: अच्छा
0: निगम की थी, हमने

0: कम से प्रयास करके एक एमओयू किया है कि
1: हाँ
0: उसको हम पार्क के रूप में डेवलप करें।
1: अच्छा
0: हमको उन्होंने जैसे ही ये सुपुर्द किया
1: हाँ
0: विकसित करने के लिए, हमने उसको विकास करते हुए आज वहां पर एक शानदार पार्क पिछले 2 सालों में ही हमने उसको विकसित करके खड़ा कर दिया है, जिसमें सब फलदार पेड़ हमने लगाने का प्रयास किया है
1: अरे वाह,
0: लोगों के लिए। तो वो कोई भी व्यक्ति आकर देखे तो उस चिकित्सा हब जो बना हुआ है, जहां कितने ही आरोग्य केंद्र चल रहे हैं, उनके
1: हाँ
0: बीच में वो एक ग्रीनरी का, हरियाली का जो केंद्र है, वो सबके लिए एक स्वास्थ्यकारी वातावरण देने में भी सफल हुआ है। ये भी हमारी एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं।
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके संस्थान की कि मरीजों की सेवा शुश्रूषा के साथ साथ आप पर्यावरण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। क्या सुदर्शन सेवा संस्थान की किसी अन्य क्षेत्र में भी कोई सेवा है सर?
0: सेवा के लिए हमने अभी तक अपने आप को इसी क्षेत्र में सीमित किया है। आगामी दिनों में एक योजना यदि सफल होती है तो वो स्वावलंबन को लेकर हम कुछ काम करने के लिए इच्छुक हैं, जहां व्यक्तियों को जो तकनीकी काम में दक्ष होना चाहते हैं या हैं,
1: हाँ
0: उन लोगों को उनके ग्राहक मिल जाएं और ग्राहकों को वास्तविक जो जानकार व्यक्ति है वे मिल जाए, और कोई प्रशिक्षण लेना चाहे तो हम जो प्रशिक्षण देने वाले संस्थान हैं उनसे संपर्क करके उनको रोजगार के लिए भी प्रशिक्षण दे सकें। इस दिशा में भी तो स्वावलंबन से जुड़ा हुआ आर्थिक स्वावलंबन का विषय भी हम सोचते हैं, यदि ईश्वर ने चाहा तो इस दिशा में भी हम कुछ सफलतापूर्वक आगे अपनी भूमिका निभा सकेंगे।
1: बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, क्योंकि स्वावलंबन तो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आज की युवा पीढ़ी बेरोजगारी के क्षेत्र में बहुत आगे और बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही है, तो स्वावलंबन का अगर कहीं प्रशिक्षण उन्हें मिल जाए, स्वावलंबन आप उन्हें सिखा सकें, तो बहुत अच्छी सेवाएं आप दे पाएंगे। समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
0: समाज के लिए, अब मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि उनके लिए संदेश दूं, लेकिन मैं मान के चलता हूं जितना मेरे जीवन का अनुभव है और सार्वजनिक जीवन में सेवा के क्षेत्र में हम लगे हैं, खाली बैठने के लिए कोई कारण नहीं है। बेरोजगार मानकर अपने आप को और किसी प्रतीक्षा में, अवसर की प्रतीक्षा में बैठने का कारण नहीं है। चारों तरफ जैसे ही दृष्टि दौड़ाएंगे हमको लगेगा का काम बहुत है। हम कहीं से भी प्रारंभ करें, 4 साल किसी प्रतीक्षा में नहीं बिताएं, वरन काम प्रारंभ करें, उनमें से आय भी होने लगेगी आपको, और आपका जो मन है वो सकारात्मक भाव से भरा रहेगा। तो सेवा के काम से भी आप प्रारंभ करेंगे तो भी आपको समस्या में नहीं पड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम मुझे समर्पित होकर अपना कर्म करते जाओ, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। तो मैं मानता हूं वही सबसे बड़ा संदेश है। कभी मत मानिए कि मेरे पास काम नहीं है, काम है, पहचान ही है, और लगेंगे तो निश्चित है कि आपको भी सफलता मिलेगी और आपकी कीमत ये समाज भी पहचान करेगा। तो यही मैं सोचता हूं कि संदेश को लेकर चलेंगे तो समाज के लिए भी अच्छा होगा, परिवार और स्वयं के लिए भी अच्छा रहेगा।
1: बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपनी बात रखी भाटी साहब, कि सेवा का दीपक जहां जलता है वहां आशा और विश्वास का प्रकाश जरूर फैलता है, और जो दूसरों के जीवन में खुशियां बांटता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जीता है। तो आपने बहुत अच्छे से अपने संदेश को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया। आप समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहें और इसी तरह पथ प्रदर्शक बनकर दूसरों के जीवन को भी आलोकित करते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप आज हमारे यहाँ पधारे, उसके लिए आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, समाज सेवी बंशीलाल भाटी से मीता मुल्तानी की बातचीत। विषय था मरीजों की निस्वार्थ सेवा। प्रस्तुति एवं संयोजन राजेश लामरोड़ का।

दोस्तों, अक्सर हम आज की सुख सुविधाओं में इस कदर खो जाते हैं कि आने वाले कल की सुध ही नहीं रहती। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वह कभी करवट लेता ले सकता है। ऐसे में आज हमारे द्वारा की गई छोटी छोटी बचत कल के किसी बड़े संकट में सबसे बड़ी राहत बनकर सामने आती है। इसलिए कहा गया है कि समझदारी वर्तमान को जीने में तो है ही, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने में भी है। अगर आसान शब्दों में कहें तो अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा बचाकर भविष्य के लिए रखना ही तो बचत कहलाता है। इसका मतलब यह कतई नहीं है दोस्तों कि हम अपनी आज की ज़रूरतों को मार दें या कंजूसी से जिएं। बचत का असली मतलब तो यही होता है कि अपनी सच्ची ज़रूरतों और अनावश्यक ख्वाहिशों के बीच अंतर को समझना। जब हम फिजूल खर्ची पर लगाम लगाते हैं तो वह पैसा धीरे धीरे एक बड़ी पूंजी बन जाता है। जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी हुई है दोस्तों, कोई नहीं जानता कि आने वाले समय में क्या मोड़ आने वाला है। जब आपके पास बैंक या किसी बचत योजना में पैसा सुरक्षित रहता है तो आप किसी भी अचानक आने वाले खर्च है, जैसे बीमारी है, नौकरी छूट जाए या कोई पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाए, तो उस समय दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बच जाते हैं। पैसों की तंगी इंसान को सबसे ज्यादा तनाव देती है दोस्तों। जब आपके पास पैसे की एक सुरक्षा ढाल होती है तो आप मानसिक रूप से भी तनाव मुक्त रहते हैं। बच्चों की उच्च शिक्षा हो, अपना खुद का घर बनाना हो, बुढ़ापे को स्वाभिमान से जीना हो, ये सब आज की बचत के दम पर ही तो मुमकिन हो पाता है। अब मन में सवाल अगर आ रहा है कि शुरुआत कैसे करें, तो बचत करने के लिए किसी बड़ी रकम की जरूरत नहीं है दोस्तों, बल्कि एक सही आदत की जरूरत होती है। जैसे ही हाथ में पैसा आए, सबसे पहले उसका एक निश्चित हिस्सा निकालकर अलग रख दें। उसके बाद बाकी पैसों से महीना चलाएं। रोजमर्रा की जिंदगी में पानी, बिजली और अनावश्यक खरीदारी को रोक कर भी बड़ी बचत की जा सकती है। बचत दरअसल दोस्तों एक निवेश है, खुद के सुकून में और अपनों की मुस्कान में। आज की गई थोड़ी सी समझदारी और संयम कल हमारे लिए गहरी राहत और सुकून का सबब बनता है। याद

देखिए, आज बजाया गया एक एक रुपया कल आपकी ढाल बनकर आपके साथ खड़ा होगा, इसलिए आज से ही कदम बढ़ाएं और अपने कल को सुरक्षित बनाएं। यही है आज की काम की बात।

0: मित्रों, कल हम मनाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और ये प्रतिवर्ष 21 जून को क्यों मनाया जाता है, यह है आज की खास बात। क्योंकि यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। दोस्तों, योग में इस दिन का विशेष आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व है। 21 जून को सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक रहती है, जो ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक है। भारतीय योग और आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन सूर्य की स्थिति मानव शरीर और चेतना को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह दिन प्रकृति में संतुलन और मनुष्य के बीच सामंजस्य का प्रतीक है, जो कि योग का मूल उद्देश्य भी है। यही थी आज की खास बात।
1: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सह मेजबान कनाडा ने इतिहास रच दिया। वैंकूवर में कनाडा ने कतर को 6-0 से हराकर विश्व कप इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। दूसरी ओर मेजबान मैक्सिको ने ग्रुप ए के मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 32 यानी नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह पक्की कर ली है। मेक्सिको के इस विश्व कप के नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। और साथ ही दोस्तों, आज जो मुकाबले हैं वो बता देते हैं आपको। ग्रुप सी में ब्राजील वर्सेस हेती का मैच है, जो सुबह 6 बजे शुरू हो चुका है। ग्रुप डी का तुर्की वर्सेस पराग्वे का मैच है, जो सुबह 8:30 बजे से शुरू हो चुका है। और ग्रुप एफ का जो मैच है वो नीदरलैंड्स वर्सेस स्वीडन के साथ है, जो रात 10:30 बजे से शुरू होगा। और ग्रुप ई का मैच है, जो जर्मनी वर्सेस आइवरी कोस्ट का जो मैच है वो रात को 1:30 बजे से शुरू होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

0: दोस्तों, हिंदी साहित्य में आधुनिक एकांकी के जनक भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की आज हम जयंती मना रहे हैं।
1: साथ ही दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रखर हस्ताक्षर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का भी आज जन्मदिन है। उनको इस मंच से जन्मदिन की बधाई देते हैं और साथ ही भारत का जो लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत लोकतंत्र है दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ फर्श से अर्श तक का सफर कोई भी तय कर सकता है। इसी लोकतांत्रिक खूबी का सबसे जीवंत प्रेरणादायक उदाहरण है माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। जी हाँ दोस्तों, 25 जुलाई 2022 को उन्होंने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी और आज माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है। वे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली राष्ट्रपति हैं। उनका यहाँ तक पहुँचना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि करोड़ों वंचितों आदिवासियों और महिलाओं के सपनों की उड़ान का प्रतीक है और आज हम इस मंच से उनको बधाइयाँ और शुभकामनाएँ प्रेषित करते हैं दोस्तों।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में सबसे पहले सुनते हैं गौरी देवी राव को।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: श्रोताओं, अंतराल से पहले आप सुन रहे थे संत सच्चिदानंद का गाया लोक भजन। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप लोक संगीत, और आपको सुनवाते हैं परमानंद परमार पार्टी का गाया ये लोक भजन।

0: श्रोताओं, ये लोग वचन आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा और
1: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशन को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास। से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशन को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
2: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर।
2: बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे अंकित तिवारी की आवाज़ में विलन फिल्म का ये गीत। बोल थे मनोज मुंतशीर के, संगीत था अंकित तिवारी का।

लीजिए अब सुनिए किक फिल्म से ये अगला गीत, बोल है इरफान के, संगीत है मयूरपुरी का और बोल है हिमेश रेशमिया के।

अभी आप सुन रहे थे इरफान की आवाज में किक फिल्म का ये गीत। बोल थे मयूर पुरी के और संगीत था हिमेश रेशमिया का।

अभी आप सुन रहे थे हमशक्ल्स फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी नीरज श्रीधर और नीति मोहन की, बोल थे समीर अनजान के, और संगीत था हिमेश रेशमिया का।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में आई फिल्म का ये गीत। बोल थे इरशाद कामिल के और संगीत था ए आर रहमान का।

लीजिए, अब सुनिए सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत। बोल है अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत है विशाल शेखर का।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

लीजिए अब सुनिए तमाशा फिल्म का ये अगला गीत। आवाज़ है लकी अली की, बोल है इरशाद कामिल के और संगीत है ए आर रहमान का।

अभी आप सुन रहे थे तेवर फिल्म का ये गीत। आवाज़ थी शफकत अमानत अली की, बोल थे कौशर मुनीर के और संगीत था साजिद वाजिद का।

लीजिए अब सुनिए मर्डर 3 फिल्म से ये गीत। आवाज़ है शफकत अमानत अली की, बोल है शैयद कादरी के और संगीत है प्रीतम का।

आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये अगला गीत हॉलीडे फिल्म से। बोल है इरशाद कामिल के और संगीत है प्रीतम का।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में हॉलीडे फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं हाईवे फिल्म से ये गीत। आवाज़ें हैं सुल्ताना और ज्योति की, बोल है इरशाद कामिल के और संगीत है AR रहमान का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत में लीजिए सबसे पहला ये गीत सुनिए सरदार खान लंगा पार्टी की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे सामू देवी की आवाज़ में ये लोक रचना। आइए अब अगली लोक रचना सुनते हैं चंपा मेथी की आवाज़ में।

अभी आपने सुना लोक संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत में लीजिए सबसे पहले सुनिए अभिजीत सावंत को।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आज के सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे अभिजीत सावंत को।

0: आप जानते ही होंगे कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

अभी आपने सुना सुगम संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश में विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली के सुमेरपुर में होने वाले राज्य स्तरीय पीएम किसान उत्सव में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज जयपुर के जनपद से 29 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आधुनिक ई बसों के संचालन से राजधानी में प्रदूषण घटेगा और शहरवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इसे विकसित भारत के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए 1100 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे राज्य में स्वच्छ और सुगम परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी।
1: हमारी सार्वजनिक परिवहन से शहरी क्षेत्रों में होने वाली प्रदूषण कम होगा और हमारा निश्चित रूप से पर्यावरण की क्षेत्र में एक नया कदम होगा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर का चयन इसमें हुआ है। 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई है जिनका आना प्रारंभ हो गया है। 475 ई बसें स्वीकृत और हुई है जो इस कुल मिलाकर के 1150 बस की सौगात मिलने जा रही है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज जयपुर में प्रदेश के लगभग 700 बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। ये कार्यक्रम सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बीएलओ के जमीनी अनुभवों, चुनौतियों और सुझावों को गहराई से समझना है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल प्रदेश भर में मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबू राज में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर में और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। इस बीच प्रदेश में जगह जगह सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने अपने जयपुर स्थित आवास पर योगाभ्यास कर प्रदेशवासियों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस दौरान महिला पुलिस और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के कार्मिकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है।

0: जोधपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा नई पीढ़ी के ऐसे विशेष बायोमार्कर्स विकसित किए जा रहे हैं जिनकी मदद से उपचार शुरू होने से पहले ही ये सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा कि किसी मरीज की कीमोथेरेपी पर कितना असर होगा। और अधिक ब्यौरा हमारे जोधपुर संवाददाता से।
1: शोध में सिंगल सेल सीक्वेंसिंग, मल्टीकलर हाई पैरामीटर फ्लो साइटोमेट्री और आधुनिक आणविक तकनीकों का उपयोग कर कैंसर कोशिकाओं का सूक्ष्म अध्ययन किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये शोध भविष्य में कैंसर उपचार को अधिक व्यक्तिगत, सटीक और प्रभावी बनाने के साथ ही मरीजों की जीवित रहने की संभावना भी बढ़ाएगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत प्रोग्राम सुनवाला सगला किसान भाइया ने दिनेश राणे जरा घने मानसु राम राम और नमस्कार सा। किसान भाइया खेती बाड़ी का कामकाज आपा करे जा, आज खेत बचाओ अभियान के तहत विषय है मरुधरा में प्राकृतिक खेती की संभावनाएं। आज आपने साथ है दिनेश कुमार यादव जी, आप विषय विशेषज्ञ हैं कृषि कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर से आप पधारिया है। राम राम सा।
1: राम राम सा। राम राम सा।
0: दिनेश कुमार जी, खास तौर से किसान भाई जी का है खेती बाड़ी का काम काज करे है, किन तरह जिको आपने ज्यादा से ज्यादा वे खेती बाड़ी का काम करे तो प्राकृतिक जी की खेती हुए सवाल आवे की भाई आ कहीं हुआ करे और इंड जी की मूल अवधारणा है आ कहीं हुआ करे।
1: हाँ, मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी प्रणाली है जिसमें स्थानीय संसाधनों के आधार पर खेती की जाती है तथा बाहरी कृषि आदानों पर निर्भरता कम की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी में जीवित रखना, जैव विविधता को बढ़ाना, खेती को टिकाऊ बनाना। प्राकृतिक खेती के नियमों के अनुरूप कृषि करने की पद्धति है। इसमें गोबर, गोमूत्र, जीवामृत, घना जीवामृत, फसल अवशेष मल्चिंग के तौर पर तथा फसल विविधीकरण का उपयोग किया जाता है। इससे खेती की लागत कम होती है और मिट्टी की गुणवत्ता सुधार होती है।
0: सही बात बताई सा आप, और खास तौर से राजस्थान जड़ो मरुस्थलीय क्षेत्र है अठे आज रे बगतर महीने आज की प्राकृतिक खेती है इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है?
1: राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु वाले हैं। यहाँ की औसत वर्षा कम होती है और भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। दूसरी ओर खेती में रासायनिक उर्वरकों की मात्रा बढ़ रही है और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता प्रभावित हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में प्राकृतिक खेती एक व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करती है किसान के सामने कि यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, नमी संरक्षण में मदद करती है तथा साथ साथ पानी कम पानी में भी बेहतर उत्पादन की संभावनाएं प्रदान करती है अपने को।
0: सही बात बतेसा। किसान भैरे मन में आवे के भाई प्राकृतिक खेती वे करनी चाहे तो आज की प्राकृतिक खेती है आ मिट्टी जी की सेहत है उन्हें किन तरह से सुधार सके?
1: प्राकृतिक खेती केवल उत्पादन का माध्यम ही नहीं बल्कि एक जीवित तंत्र है। इसमें करोड़ों सूक्ष्म जीवी रहते हैं जो पौधे के पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घना जीवामृत जैसे जैविक घोलों का उपयोग किया जाता है जिसमें लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। इससे मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ता है तथा पोषक तत्व का चक्र सक्रिय रहता है जिससे मिट्टी की संरचना बनी रहती है।
0: दिनेश कुमार जी, अपने शरीर में हृदय है वो अपने पूरे शरीर ने चलाया करे तो कहीं प्राकृतिक खेती किसान भाई अपने लेवे इनमें भी कोई चीजा कोई है

0: या कोई खेती रो कोई तरीको है जो को हृदय रूप में काम कर सके?
1: हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मिट्टी के लिए एक प्रकार का हृदय, बहुत से बायोस्टिमुलेंट हैं, जैसे जीवा अमृत है, घना जीवा अमृत है,
0: हाँ?
1: ये मिट्टी के हृदय कहा जाता है इसे। इसमें गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन तथा स्थानीय मिट्टी से तैयार किया जाता है। ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को बढ़ाकर पौधों को पोषण उपलब्ध कराने में सहायता करता है। घना जीव अमृत इसका ठोस रूप है जो खेती में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है।
0: सही बात बताई सा हमें एक बात आवे के जी का अपना फसला जी का अवशेष है वह प्राकृतिक खेती में मैंने किन तरह से महत्व क्या करे?
1: हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मल्चिंग का अर्थ होता है कि जो अपन फसल काटने के बाद में जो अवशेष बचते हैं
0: हाँ?
1: उन और अन्य जैविक पदार्थ होते हैं जिनसे पौधे के आसपास

0: सकते हैं,
1: हाँ
0: उन और अन्य जैविक पदार्थ होते हैं जिनसे पौधे के आसपास की जगह को अपन ढककर जो मिट्टी में नमी रहती है उसको रोक सकते हैं। मल्चिंग से वाष्पीकरण कम होता है और नमी लंबे समय तक बनी रहती है और इससे खरपतवारों की वृद्धि में भी रुकावट होती है और ये सिंचाई की आवश्यकताओं को भी कम करता है।
1: सही बात बतेसा, हम जो आप बात करा खास तौर से राजस्थान में मैंने एड़ी किसी किसी फसल की है जो को प्राकृतिक खेती के वास्ते बहुत ही बढ़िया मानी जा करे।
0: राजस्थान में मुख्य तौर पर अपन पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो इसमें बाजरा, मूंग मोट, गवार, चना, तिल, जीरा, मेथी और ईसर बोल जैसी फसलें जो प्राकृतिक खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती हैं। ये फसलें कम पानी में अच्छी उपज देती हैं किसान भाइयों को,
1: हाँ?
0: और स्थानीय जलवायु के अनुरूप होती हैं, विशेष रूप से दलहनी फसलें जो मिट्टी की उर्वरकता क्षमता को बनाए रखने में मदद करती हैं।
1: सही कहो सा, जो किसान भाई किनी तरह की कोई खेती करे तो उन रमैने कीट है जिका रोग है वे लागिया करे, तो सवाल आवे सा के प्राकृतिक खेती रमैने भी जिका कीट और रोग लाग जावे उनारो जी को नियंत्रण है वो संभव है?
0: हाँ बिल्कुल संभव है, क्योंकि पुराने जमाने में भी हम देखते थे कि ये आज केमिकल है वो पहले नहीं हुआ करते थे, तो पहले के लोग प्राकृतिक खेती ही किया करते थे जिसमें प्राकृतिक खेती में नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे जैविक गोलों का उपयोग किया जाता था जो कीटों को जीवन चक्र को प्रभावित करके जैव विविधता को बढ़ाता था और कृषि वानिकी के माध्यम से कीट एवं रोगों को प्राकृतिक नियंत्रण करता था।
1: प्राकृतिक खेती में मैंने किसान जी की लागत है आ कम हुआ करे?
0: बिल्कुल, प्राकृतिक खेती से जो किसान खेती करते हैं उनसे उनके जैसे उर्वरक, कीट, अन्य कृषि आधानों की कीमत लगातार जो बढ़ रही है वो प्राकृतिक खेती करने से इन आधानों की और जो उर्वरक और कीटनाशकों की लागत कम हो सकती है और शुद्ध लाभ किसान का बढ़ता है।
1: इनके साथ साथ जी आप बात करा अपन अटे खिजड़िया भी घनी हुए, रोहिड़ा भी घनी हुए, कई अड़ा जी का वृक्ष है एक खेता में उग गया करे, तो किन तरह से महत्व रा क्या करे प्राकृतिक खेती रमाइने?
0: जैसे आज अनियमित वर्षा का बढ़ता और तापमान और सूखे की घटनाएं हो रही हैं,
1: हाँ
0: घटनाएं जो हो रही हैं कृषि के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्राकृतिक खेती से मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़कर जल संरक्षण एवं कार्बन की सहायता करते हैं, और राजस्थान के प्राकृतिक प्रणाली में खेजड़ी का एक विशेष महत्व है।
1: हाँ?
0: खेजड़ी में बेर, रोइड़ा और करण जैसे वृक्ष हैं जो खेती के साथ जोड़ने से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं, अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। खेजड़ी की पत्तियां पशुओं के लिए एक पौष्टिक चारा प्रदान करती हैं। ये वृक्ष सूखे की स्थिति में भी टिकाऊपन रहता है।
1: इनके साथ साथ यूं बात आवे दिनेश कुमार जी के भाई सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाई किन तरह से मदद कर सके, सहायता कर सके?
0: मैं किसान भाइयों को बता सकता हूं कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन और किसान गोष्ठियों के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को जीवामृत निर्माण, बीजामृत निर्माण और प्राकृतिक कीट प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उसके साथ साथ प्राकृतिक खेती के अन्य तकनीकों का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है।
1: किसान भाई प्राकृतिक खेती शुरू करनी चाहे उन्होंने आपका ही सलाह देनी चाहो?
0: मैं किसानों को सलाह देना चाहूंगा कि वे पहले अपने खेत के छोटे से हिस्से से शुरू करें और धीरे धीरे अनुभव प्राप्त करें, फिर बड़े क्षेत्र की ओर बढ़े, फसल चक्र अपनाएं, दलहनी फसलों को शामिल करें जिससे खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, और खेतों में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र से नियमित तकनीकी सलाह लेते रहें।
1: सही बात बताइए सर, हमें जो आप बात करा के जलवायु परिवर्तन जी को है अबारे भगत में बहुत ज्यादा वैल्यू है, इनारे संदर्भ में मैंने आज की प्राकृतिक खेती है कितनी लाभदायक और महत्वपूर्ण है?
0: आज जैसे हम देख रहे हैं कि अनियमित वर्षा हो जाती है और बढ़ता तापमान और सूखे की घटनाएं कृषि के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाकर हम भूमि में जल संरक्षण की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और मिट्टी में कार्बन की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं। इससे कृषि प्रणाली में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अत्यधिक लचीलापन ला सकते हैं।
1: सही बात बतेसा दिनेश कुमार जी, हालता हालता आप किसान भैरे वास्ते कई और संदेश देनी चाहो?
0: मैं किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक केवल एक तकनीक ही नहीं है, ये भविष्य की टिकाऊ कृषि का आधार है। यहाँ मिट्टी, जल, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसानों की आय बढ़ाने का भी एक मुख्य माध्यम है। मरुधरा की परिस्थिति में प्राकृतिक खेती जल संरक्षण, लागत में कमी करना, टिकाऊपन, उत्पादन की दिशा में एक प्रभावी विकल्प सिद्ध हो सकती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कुमार जी यादव, आप पधारिया और आप मरुधरा महीने प्राकृतिक खेती की संभावना है इन विषय माते किसान भाई ने जानकारी दे रही। राम राम सा।

अभी आपने सुना किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम नारीवाटिका।

0: रंग जब दिल की ज़मीन पर उतरने लगते हैं तो खामोश लम्हे भी बोलने लगते हैं। कला की दुनिया का करिश्मा कुछ ऐसा है कि बेजान से कैनवास भी महकने लगते हैं।
1: आदाब, सलाम और ढेर सारी मोहब्बतों के साथ आप सभी प्यारी प्यारी सखियों का इस्तकबाल है। आप सुन रही हैं नारीवाटी का, जहां हम बातें करते हैं हुनर की, हौसलों की, रचनात्मकता की और उन रंगों की जो जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देते हैं। मैं आपकी अपनी रेडियो सखी ज्योत्सना और मेरे संग हैं
0: मकसूदन। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हर रंग में कोई एहसास बसता है, हर रेखा में कोई राज छुपा रहता है। मंडला की दुनिया यूं ही दिलों को नहीं भाती, इसके दायरे में सुकून का एक जहां बसता है। सखियों, कला सिर्फ रंगों और नक्शों का नाम नहीं, बल्कि दिल के हाल को बयां करने का एक खूबसूरत जरिया भी है। ऐसे ही एक दिलकश कला मंडला आर्ट। मंडला यानी दायरा, चक्र और मखमूलियत। ये फन हमें कुदरत, कायनात और अपने अंदर की दुनिया को जोड़ता है।
1: मकसूदन, मंडला आर्ट की जड़ें हमारी तहजीब और रूहानी विरासत से जुड़ी हुई हैं। सदियों से मंदिरों, इबादतगाहों, तस्वीरों और सांस्कृतिक धरोहरों में इसकी झलक नजर आती रही है। यह सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक रूहानी सफर का एहसास भी है।
0: मंडला की सबसे दिलकश बात इसका तवाज़ुन और खूबसूरती से सजा हुआ अंदाज है। एक छोटे से मरकज बिंदु से शुरू होकर दायरे, बेल, बूटे, फूल, पत्तियां और तरह तरह के नक्शे मिलकर एक ऐसी शाहकार तख्लीक करते हैं जिसे देखकर दिल बाग बाग हो जाता है।
1: बिंदुओं की महफिल में जब रंग उतर के आते हैं, मन के वीराने में भी गुलशन नजर आते हैं। फिक्र की धूल कहीं दूर बिखर जाती है और सुकून के चिराग खुद ब खुद जल जाते हैं।
0: क्या बात है।
1: सखियों सखियों, शायद यही वजह है कि आज की मसरूफ जिंदगी में मंडला आर्ट सिर्फ सजावट तक महदूद नहीं रही, और यह अपने आप मुलाकात करने से दिल को राहत देने और जहन को ताजगी बख्शने का भी एक खूबसूरत जरिया बन चुकी है।
0: बिल्कुल सही कहा ज्योत्सना। रंग बिरंगे मंडला डिजाइनों के जरिए लोग अपनी तख्यल दुनिया को रंगों में ढाल रहे हैं। कागज, कैनवास, लकड़ी, पत्थर और कई दूसरी सतहों पर कला की अपनी अलग पहचान बिखेर रहे हैं, है ना?
1: बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है मकसूदन, इस कला की इस कला को सीखने के लिए किसी बड़ी तालीम या खास माहिर होने की जरूरत नहीं। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी लगन और दिल में कुछ नया करने का जज्बा हो तो हर शख्स अपनी तख्लीक को एक नई पहचान दे सकता है।
0: रंगों से जब ख्वाबों की तहरीर बनती है, मेहनत की हर बूंद तकदीर बनती है। छोटी छोटी बूंद जब साथ सफर करती है, तब कहीं जाकर एक दिलकश तस्वीर बनती है।
1: बिल्कुल, जिंदगी भी मंडला जैसी एक प्यारी दास्तां है। हर बिंदु में छुपा कोई अरमा है। रंग, सब्र और मेहनत जब साथ मिल जाते हैं और साथ निभाते हैं, तब जाकर हर सपना एक हसी जहां बन जाता है। सखियों, मंडला हमें ये पैगाम देता है कि छोटी सी शुरुआत भी बड़ी खूबसूरती की वजह बन सकती है।

0: वार सजावटी और मिट्टी बर्तनों पे इसकी खूबसूरती झलक उठती है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने इस कला को एक नई पहचान और एक नई उड़ान दी है। आज कई युवा और महिलाएं घर बैठे इस कला के जरिए अपनी सलाहियत को निखारती हैं और स्वरोजगार की राह भी बना रही है ना ज्योत्सना?
1: बिल्कुल, ये कला सिर्फ रंगों और डिजाइनों तक सीमित नहीं है मकसूदन, बल्कि आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता का भी बेहतरीन उदाहरण है। एक साधारण सा बिंदु जब दूसरे बिंदुओं से जुड़ता है तो एक अद्भुत आकृति जन्म लेती है। ठीक वैसे ही छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ी कामयाबी की तस्वीर बनाते हैं।
0: बिंदुओं की महफिल में जब रंग उतर आते हैं, मन के वीराने भी गुलशन नजर आते हैं। फिक्र की धूल कहीं दूर बिखर जाती है और सुकून की चराग खुद ब खुद जल जाते हैं, है ना?
1: बिल्कुल, डॉट मंडला आर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका मानसिक प्रभाव भी है मकसूदन। ये कला मन को सुकून देती है, ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है और तनाव को कम करने में मदद करती है। एक एक बिंदु को धैर्यपूर्वक सजाने की प्रक्रिया व्यक्ति को शांति और संतुलन का एहसास कराती है।
0: यही तो वजह है कि बहुत से लोग इसे आर्ट थेरेपी भी मानते हैं। जब हम रंगों और बिंदुओं की इस दुनिया में खो जाते हैं ना, तो कुछ पल के लिए तमाम फिक्रें जो है वो पीछे छूट जाती है। मन की नई मन मन को नई ताजगी महसूस होती है और जीवन भी थोड़ा खुला खुला साफ साफ नजर आता है कि अब तो कोई
1: बिल्कुल,
0: टेंशन ही नहीं है ना?
1: बिल्कुल, एक एक बिंदु की तरह अपने जीवन के हर छोटे प्रयासों को भी उतनी ही अहमियत दे सके हो, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा बिंदु ही पूरी तस्वीर को सबसे बड़ी खूबसूरती से सजा देता है।

हर बिंदु में छिपी होती एक नई कहानी, रंगों से सजती है मन की रवानी, जो दिल की खामोशी को भी आवाज दे जाए, वही तो है कला जो रूह तक उतर जाए। सखियों, डोट मंडला आर्ट आज केवल कैनवास तक सीमित नहीं रहा, पत्थरों, लकड़ी, ट्रे, कोस्टर दी

0: चित्रकला के एक आयाम को लेकर श्रुति लोहिया से भेंट वार्ता कर रही है मेरी सखी ज्योत्सना। इन्होंने रेजिन आर्ट के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है।
1: नमस्ते श्रुति लोहिया जी।
0: नमस्कार।
1: आपका आकाशवाणी जोधपुर के नारी वाटिका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप एक रेजिन आर्टिस्ट हैं। जब भी हम कोई नया शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले जहन में ये सवाल आता है कि आखिर ये है क्या, तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि रेजिन आर्ट होता क्या है।
0: जी बिल्कुल, रेजिन आर्ट दो केमिकल्स को मिला करके बनाया गया एक आर्ट है। ये प्योरली केमिकल्स हैं, ठीक है। तो दो तरीके के पदार्थ होते हैं, एक रेजिन और एक हार्डनर। जब हम दोनों को मिलाते हैं उसके अंदर और भी आर्टिस्टिक चीजें मिलाते हैं, उसका जो एंड में हमें दिखाई देता है करीब 12 से 24 घंटे बाद में ग्लास जैसी फिनिश आ जाती है, जिसको आप बहुत शाइनी रूप में देख सकते हैं। तो वो जो आर्ट है वो रेजिन आर्ट है।
1: जी
0: हम इसके अंदर बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं, जैसे प्रिजर्व करना चीजों को, अलग अलग तरीके के आर्ट फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। रेजिन बेसिकली एक केमिकल है जिसके नीचे कुछ भी किया गया है उसको इससे हमने प्रोटेक्ट कर दिया है,
1: जी जी
0: सिंपल वे में अगर कहा
1: जी
0: जाए तो।
1: अच्छा, तो आपका इस कला के प्रति रुझान कैसे हुआ, कब से आपने स्टार्टिंग की?
0: तो एक्चुअली बेसिकली मैं बचपन से ही आर्ट की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन रही हूँ।
1: जी जी
0: स्केचिंग, ड्राइंग, एक्रेलिक पेंटिंग, वेरियस काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म, स्पेशली खुद करने वाले आर्ट फॉर्म्स जहाँ कहीं सीखने ना जाना पड़े,
1: बिल्कुल
0: उसका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। क्योंकि हम लोग के बचपन में काफी हमें फ्री समय मिलता था
1: जी
0: और काफी घर में ऐसी चीजें पड़ी होती थी जिनसे हम आर्ट फॉर्म्स कर सकते हैं, और मेरे मम्मी पापा भी बहुत मोटिवेट करते थे, तो वहां से आर्टिस्टिक स्वभाव डेवलप हुआ। रेजिन आर्ट कुछ साल पहले बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग, अगर आप देख रहे हो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे,
1: जी जी
0: और जहां देखे रेजिन आर्ट की चीजें दिखाई देती थी,
1: जी
0: उसको देख करके वापस इंटरेस्ट आया कि मैं वापस से नए फॉर्म्स ऑफ आर्ट को सीखूं। तो मैंने भी, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स पे वापस से थोड़ा सा रिसर्च किया और खुद से ही रेजिन आर्ट को बनाना चालू किया एक्सपेरिमेंटल तौर पे।
1: जी
0: सबको बहुत पसंद आने लगा जब गिफ्ट्स
1: जी
0: देते थे, उन्होंने मुझे वापस बनाने के लिए मोटिवेट किया, बच्चों ने, फैमिली ने मोटिवेट किया, और धीरे धीरे अपने आप ये प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया, आई वुड से कोविड के जस्ट बाद में।
1: जी जी
0: तो तब से प्रोफेशनली कैसे ग्रेजुअली चालू हुआ मुझे डेट भी याद नहीं है
1: जी
0: जनरली।
1: बिल्कुल। तो आपने अभी बातें की कि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज होती हैं और बहुत अलग अलग से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जो रेजिन आर्ट में यूज होती है, और इसमें कुछ सामग्रियां भी यूज होती होंगी, टूल्स भी यूज होते होंगे, उनके बारे में भी हमें बताइए।
0: बिल्कुल, तो जैसे आपने टेक्निक्स का मुझसे सबसे पहले पूछा, आप जब देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रेजिन में आपको ओशियन का लुक दिखाई देता है, जैसे कोई समंदर है,
1: जी
0: तो वो समंदर सिर्फ नीला रंग डालने से समंदर नहीं बन जाता है, उसमें
1: जी
0: ओशियन की पूरी टेक्निक इन्वॉल्व होती है कि किस समय पे हमें जहां पे रेत दिखती है उधर हमें पोर करना है।
1: जी
0: पोरिंग से मेरा मतलब रेशियो में मिक्स करने के बाद डालना,
1: जी
0: तो किधर रेत के वहां पे कब डालना है, जहां नीला समंदर दिखना है वहां कब डालना है, सबसे महत्वपूर्ण जब उसकी वेव्स जो लहरें हैं उसका जो एग्जैक्ट लुक चाहिए, कितने उसमें फोम बन रहे हैं, कितने उसमें बबल्स दिख रहे हैं, कि वो ओरिजिनल जब आप दूर से देखें,
1: पूरा विजुअलाइज होना चाहिए।
0: बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि अब ये तो मैं उसी समंदर को देख रही हूँ एकदम प्रत्यक्ष, एकदम लाइव,
1: जैसे ऐसा लगे कि बिल्कुल सामने है और
0: बिल्कुल,
1: हम
0: तो
1: वहां
0: ऐसी
1: फील आना चाहिए।
0: तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक जैसे ओशियन टेक्निक हुई, एक्चुअली देखिए रेजिन की टेक्निक्स भी हमने ही नाम दिया है, जितने हमने उसके अंदर चीजें क्रिएट
1: जी
0: करते गए
1: जी
0: और उनको क्रिएट करने में जो बारीकियों का ध्यान रखते गए, उन टेक्निक्स का सब आर्टिस्ट ने एक एक करके नाम देते गए। फिर लेयरिंग की टेक्निक होती है, प्रिजर्वेशन जो सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं आजकल ट्रेंड में है, लोग गिफ्ट किए हुए फ्लावर्स, शादी में पहनी हुई वरमालाएं,
1: जी
0: इनको प्रिजर्व करवाते हैं। छोटे बेबीज की फर्स्ट सोनोग्राफी,
1: जी
0: बेबी
1: जी
0: का फर्स्ट टूथ, फर्स्ट हेयर का लॉक,
1: ओहो
0: अम्बिलिकल कॉर्ड,
1: जी
0: यहां तक मतलब बहुत कुछ चीजें प्रिजर्व। तो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक
1: मेमोरीज
0: है
1: रखने के लिए।
0: मेमोरीज प्रिजर्व करने के लिए, पास्ट अवे जो लोग हैं उनकी भी मेमोरीज प्रिजर्व करते हैं,
1: अच्छा
0: उनकी पुराने जैसे चश्मे हैं,
1: जी
0: वॉच है, ऐसी कुछ चीजें जो उनको देख करके बार बार उनकी याद आती है और
1: जी
0: वो डीके ना हो विद टाइम।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी लकड़ी की फ्रेम के अंदर उन्हें रखा और रेजिन डाल दिया और प्रिजर्व हो जाएगा, इसमें बहुत सारी टेक्निक इन्वॉल्व है
1: जी
0: जो समय आते और कहीं प्रोफेशनल से आप सीखते हैं तो सकते हैं।
1: जी
0: फिर लेयरिंग की एक टेक्निक होती है, अलग अलग लेयर्स में जब हम इसको डालते हैं तो वो

0: चीज ऐसे लगती है कि मल्टी डिमेंशनल है,
1: जी, 3D की
0: कि थ्री
1: जैसे।
0: डी के जैसी।
1: जी
0: फिर जब आपने 3D बोला तो देर इज अनादर 3D टेक्निक जिसमें हम चीजें उभरी हुई दिखती हैं। एक मल्टी डिमेंशनल दिखती है, ऊपर से फ्लैट होती है। 3D मतलब जब हाथ से फील करते हैं, एवरीथिंग इज 3D, सब कुछ 3D है।
1: जी
0: जैसे फूल हुए या कोई और आकार हुए जो ऊपर से 3D दिखाई दे रहे हैं, वो पूरे हाथ से ही बनाए जाते हैं,
1: जी
0: उसमें कोई मशीन और टूल्स यूज नहीं होते। तो दिस इज द टेक्निक पार्ट, ये जो आपने मुझसे तकनीकियां पूछी थी इसकी। देन कम्स द मटेरियल्स जो इसके अंदर हम यूज
1: जी
0: करते
1: जी
0: हैं। तो मटेरियल्स में अनगिनत है एक्चुअली, कोई भी चीज डाल सकते हैं रेजिन के अंदर, बट जो बेसिक है वो मैं आपको बता सकती हूँ। कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे कलर्स,
1: जी
0: हम एक्रेलिक पेंट्स यूज करते हैं पेंट करने में, इसमें एक्रेलिक पेंट्स नहीं होते, रेजिन के स्पेसिफिक टाइप के पिगमेंट
1: अच्छा,
0: आते हैं।
1: जैसे
0: पिगमेंट कोई लिक्विड फॉर्म में होता है और कोई पाउडर फॉर्म में होता है,
1: जी
0: ऐसे ही रेजिन के लिए भी स्पेशलाइज
1: जी
0: उसी में यूज करने वाला पिगमेंट आता है,
1: जी
0: वही यूज करना चाहिए। हर कोई चीज यूज नहीं कर लेना चाहिए, उससे डिजायर्ड रिजल्ट जैसे हमें चाहिए वैसा आउटपुट नहीं आता है।
1: जी
0: ठीक है, तो जो पिगमेंट्स जो चीजें रेजिन के साथ ब्लेंड होने के लिए ऑलरेडी मार्केट में ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके से आती हैं,
1: जी
0: उन्हीं को उनके साथ हमें यूज करना चाहिए, उसमें अलग अलग लुक्स देने के लिए जैसा हमें चाहिए। जैसे ओशियन मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे हमें चाहिए होते कि हमें कुछ लुक क्रिएट करना है तो उसी को यूज करना चाहिए। फिर आपने मुझसे उपकरणों के बारे में पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि
1: जी
0: लोग घर में रेजिन आर्ट चालू कर देते हैं रेजिन ऑर्डर करके ही,
1: जी
0: उपकरण को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज
1: टूल्स
0: है
1: हैं उसके।
0: टूल्स। एक तो मिक्सिंग के लिए क्या यूज करना, मिक्सिंग कैसे करना, वेइंग मशीन।
1: जी
0: अपने चम्मच से मेजर करके आप नहीं डालते
1: जी
0: कि 2 चम्मच एक ले लिया, 1 चम्मच एक ले लिया और हम शुरू हो जाएं, नहीं। तो वेइंग मशीन, ठीक है, डिस्पोजेबल ग्लासेस,
1: जी
0: स्टिक्स, ग्लव्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टूल,
1: जी
0: नेकेड हैंड से,
1: कभी नहीं
0: अपने
1: करना
0: हाथों से कभी नहीं करना चाहिए,
1: बिकॉज इट इज केमिकल।
0: बिल्कुल। और ये हजार्डस है, दिखने में बहुत खूबसूरत है पर इसके खुद के भी नुकसान हैं। तो ग्लव्स पहनने के लिए, मुंह पे मास्क, अगर आप हॉबी के लिए करते हैं तो जो N95 मास्क हम लोग कोविड में लगाते थे वो भी सफिशियंट है। अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं, इसके इंसुलेटेड मास्क होते हैं
1: जी
0: क्योंकि काफी देर आपको पहने रहना पड़ेगा जितनी देर आप काम करेंगे। देन आई वेयर, चश्मे
1: जी
0: की तरह आंखों में बिल्कुल उछलना नहीं चाहिए। और आप सोचोगे क्यों उछलेगा, बट हम किचन में भी काम करते हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, तो कई बार कुछ चीजें आंखों में उछल के आती है।
1: जी
0: देन बबल टॉर्च, इसमें बहुत बारीक बारीक बबल्स खुद से बनते हैं, जैसे
1: जी
0: हम कोई दो चीज मिलाते हैं चम्मच से उसमें झाग बनते हैं, जब हम डालेंगे तो वो बबल्स वहीं रह जाएंगे।
1: जी
0: तो फ्लेम टॉर्च आती है, जैसे हमारा लाइटर होता है जिसमें से आगे से आग निकलती है, वैसी फ्लेम टॉर्च होती है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इन चीजों के, ये बेसिक्स हैं,
1: जी
0: इनके बिना मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करती रेजिन आर्ट घर पे एज अ हॉबी ऑल्सो चालू करना।
1: जी
0: आज मुझे कुछ नया बनाना है
1: जी
0: तो उस दिन, एक तो पहले हमारा जो मूड होता है वो हमें बहुत इंस्पायर कर रहा होता है कि आज कैसा मूड है मेरा। जैसे आज मैं जब सुबह मेरे स्टूडियो गई थी तो आज मेरे मूड में कुछ ऐसा आया कि कुछ ऐसा देखूं जिसको देख के मेरी आंखों में चमक आ जाए।
1: जी
0: तो मैंने एक लड्डू गोपाल की तस्वीर से शुरुआत करी कि सबसे अच्छा दिन शुरुआत होता है जब एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। तो हमने उसके साथ में चालू किया कि हम ये हमारे स्टूडियो के लिए ही बनाते हैं, ये किसी प्रोफेशनली ऑर्डर का पीस नहीं था। तो हम जब हमारे खुद के लिए बना रहे होते तो हम पूरी फ्री फ्लोइंग क्रिएटिविटी से जा रहे होते हैं।
1: जी
0: तो हमने चालू किया उनके फेस को विजुअलाइज करके उसको ड्रॉ करना, पेंट करना, देन उसके बाद में उनके ऊपर हम कैसे उनका श्रृंगार करेंगे। जब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर जाते जाएंगे, तो आज हमने ऐसे जब हम ड्रॉ करते हैं पेपर पे लिखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है,
1: जी जी
0: आज शुरू कर रही हूँ, ये
1: जी
0: खत्म होगा 4 दिन में मेरा प्रोजेक्ट,
1: जी
0: तो 4 दिन में 4 बार तो मैं नहीं चेंज हो सकती हूँ, आई हैव टू कुछ सोचूंगी और उसी पे टिकी रहूंगी। तो मैंने जो विजुअलाइज किया कि मैं इस पे कुछ 3D बना करके फूल भी लगाऊंगी, तो ये दूसरों से जो हम जो मार्केट में जो चीजें देखते हैं उससे कुछ अलग दिखाई देगा
1: जी
0: कि श्रुति
1: यूनिकनेस
0: लोहिया का
1: आएगी।
0: बनाया हुआ पीस है ये, मेरी एक सिग्नेचर स्टाइल आप समझ लें। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ मास्टरपीस बन के निकल के आता है, और
1: जी
0: काफी बार क्लाइंट से भी हमें इंस्पिरेशन मिलती है, वो अपना एक छोटा सा आइडिया देते हैं कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, फिर हम उन्हें सजेशंस देते हैं, फिर बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, तब हमें समझ में आता है उसे क्या चाहिए, और
1: जी
0: हम फिर काफी बार क्लाइंट हम पे फिर ट्रस्ट करके छोड़ देता है और फिर हम लोग उनको बना के देते हैं। 99.9% एंड टाइम्स उनकी इमेजिनेशन से बहुत परे निकल के आता है।
1: जी, ऐसा कोई अनुभव है जो बहुत ही को आपके दिल के करीब हो और ऐसा कोई मास्टरपीस है जो आपने बनाया हो? और
0: हाँ बिल्कुल है, मैंने अभी रिसेंटली एक
1: क्लाइंट की डिमांड पर
0: बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मोर मैंने बनाया। क्लाइंट का सिर्फ ये थॉट था कि

0: मुझे एक मोर चाहिए
1: जी,
0: और बहुत ही खूबसूरत हो दिखने में, और कोई मेरे घर में आके उस वॉल पीस को देखे तो बस उसी को देखता रह जाए।
1: जी,
0: ऐसा
1: जी.
0: नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल मोर नदी के पास है, वैसा मोर नहीं दिखना चाहिए। तो कुछ इमेजिन करके तो मैंने उससे एक इमेज क्रिएट की, फोटोग्राफ क्रिएट करी कि एक मोर है जो जंगल में रात में एक नदी के पास में है और उस मोर की रोशनी से उसके आसपास का जंगल ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो फायर पे है, बट पॉजिटिव फायर मतलब, बट वो रोशन हो रहा है उस मोर की चमक से। और जब उसको हमने पूरा क्रिएट किया उसके बाद में हम खुद भी अचंभित थे जो आउटकम आया।
1: और श्रुति जी, जब आपने बात की लड्डू गोपाल की तो मेरा अगला प्रश्न यही है आपके साथ में। तो हमारे भारत की पारंपरिक कलाएं इतनी सुंदरता और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती हैं, वहीं रेजिन आर्ट एक आधुनिक कला है। तो आपको लगता है कि पारंपरिक भारतीय कलाओं और रेजिन आर्ट का सुंदर समन्वय हो सकता है?
0: बिल्कुल हो सकता है, और मैं अपने प्रोडक्ट्स में भी उसकी काफी कोशिश करती हूँ कि काफी जो हमारे भारतीय ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं जैसे मंडला, फड आर्ट, ये सब चीजों का थोड़ा थोड़ा रूप हम अपने इसमें कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि उनका समावेश हम करें, क्योंकि ये मॉडर्न आर्ट फॉर्म कोई काम का नहीं जब तक उसमें ट्रेडिशनल चीजें नहीं मिलेगी तो, और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट भी नए कैसे बनेंगे। तो हम लोग जैसे जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, जब उनको ये चीजें हम क्रिएट करते हैं तो उन्हें भी आइडियाज मिलते हैं कि हम भी ये कर सकते हैं, और वो आर्ट फॉर्म लॉस्ट नहीं होता है, नहीं तो गुम हो जाएगा कहीं ना कहीं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो प्रयास जरूर रहता है कि अपने जो भी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं किसी ना किसी तरीके से हम लोग उसको उसके अंदर ले। अब ये आर्टिस्ट की कला है कि वो कैसे दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकता है, और यही क्रिएटिविटी है।
1: श्रुति जी, जो सखियां हमें अभी सुन रही हैं उनके मन में भी आज की हमारी जो वार्ता है उसको सुनकर रेजिन आर्ट को एक रोजगार या स्वरोजगार या हॉबी के रूप में अपनाने का विचार आए तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगी, क्या मार्गदर्शन देंगी, क्या टिप्स देंगी?
0: ये बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत अच्छी चीज भी है अगर चार लोग भी इंस्पायर होते हैं आज हमें ये सुनकर के कि हम एक नई चीज ट्राई करें। सबसे पहले अगर प्रोफेशनली लेते हैं बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा जरिया बन सकता है इनकम का, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा चलन में है। उसके अलावा जो मिड एज की वुमेन है उनके लिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं बहुत फ्री समय होता है, और एक नया आर्ट फॉर्म ट्राई करने से आप उन सब चीजों से वापस अपने आप में एक नई एनर्जी और ऊर्जा ला सकते हो। बहुत सिंपल तरीकों से आप स्टार्ट कर सकते हो, काफी बार ऑनलाइन भी आप देख सकते हो, काफी वीडियोस अवेलेबल हैं सिखाने के लिए। अगर आप एक्सपेरिमेंटल हो, रिस्क लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती कि दो प्रोडक्ट खराब भी होंगे पर मैं खुद ट्राई करूंगी, तो कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से आप किट आते हैं रेजिन स्टार्टर किट, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जो वीडियोस हैं उनमें जितनी भी जानकारी दी हो बारीकी से एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके और कुछ ट्राई करें। अगर आपको लगता है नहीं आप इतने एक्सपेरिमेंटल नहीं हो, इतने रिस्क वाले नहीं हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्कशॉप हो रही होगी, आप जाएं उसमें। थोड़े रुपए खर्च होंगे पर जो वहां पे सीखोगे वो अपने साथ लेके आओगे, तो जो खर्च करोगे उसका तो बना के लाओगे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कुछ बिगाड़ने नहीं वाली हूँ।
1: जी बिल्कुल,
0: ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी दो में से एक तरीका आप चूज करो, बट शुरू करो।
1: जी,
0: देयर इज नो हार्म, शुरुआत जरूर करनी चाहिए।
1: जी श्रुति जी, आप क्या बच्चों को भी ये करना चाहिए, क्योंकि एक आर्ट फॉर्म तो स्कूल से सिखाया जाता है, ऐसी कोई एज लिमिट है?
0: हाँ बिल्कुल, ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, और कोई भी बच्चों के लिए केमिकल रिकमेंडेड नहीं है। जिस केमिकल को यूज करने के बाद ग्लव्स मास्क मैंडेटरी है, जरूरी है, तो ये तो अपने आप ही समझ आ गई कि बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले इन चीजों का ध्यान नहीं रख पाएंगे। उनकी इम्यूनिटी बड़ों के कंपैरिजन में बहुत नाजुक होती है। और यहाँ तक सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, प्रेग्नेंट वुमेन उन्हें भी नहीं करना चाहिए, और या कोई बीमारी हो, आपको कैंसर पेशेंट हो या कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी हो, मैं नहीं एडवाइस करूंगी उन लोगों को रेजिन आर्ट करने के लिए, क्योंकि केमिकल ही है आर्ट है, मजा आता है करने में, वो एक सेकेंडरी चीज है।
1: श्रुति जी, आज आपने रेजिन आर्ट की बारीकियों, इसकी संभावना और इससे जुड़े अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हमारे श्रोताओं को, विशेषकर उन सखियों के लिए जो अपनी क्रिएशन को नई पहचान देना चाहते हैं, उनके लिए एक प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगी?
0: जी हाँ बिल्कुल, मैं सभी महिलाओं से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने अंदर की क्रिएटिविटी को कभी कम मत समझिए, ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो और कुछ ना कुछ बनाओ, किसी को गिफ्ट करो, को पर्सनल एक टच ऐड करो हर चीज को। मजार से खरीद करके चीजें देने से तो बेहतर है कि हम खुद ही बना करके दें, 19-20 होगा, बट शुरुआत करें। शुरुआत मतलब पहला कदम रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट करें। और हर औरत क्रिएटिव होती ही है,
1: बिल्कुल,
0: जो किचन में क्रिएटिव हो सकती है, नए पकवान रोज बना सकती है, वो किसी भी एस्पेक्ट में क्रिएटिव हो सकती है। तो एक्सप्लोर करो अपने उस

0: अंदर के छिपे हुए बच्चे को भी, जिसमें वो क्रिएटिविटी है.
1: जी
0: एंड स्टार्ट.
1: जी थैंक यू श्रुति जी, आप स्टूडियो में आए, आपने इतना अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू सो मच.
2: सखियों, अभी आपने मेरी सखी ज्योत्सना की रेजिन आर्ट की कलाकार श्रुति लोहिया से भेंटवार्ता सुनी. उन्होंने हमारी सखियों के साथ रेजिन आर्ट के बारे में खास जानकारी साझा की. इसके लिए आकाशवाणी जोधपुर के पूरे परिवार की ओर से बेहद शुक्रिया.

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सखियों, कला की दुनिया में कुछ ऐसी विधाएं भी हैं जो रंगों को सिर्फ सतह तक महदूद नहीं रखती, बल्कि उन्हें एक नई गहराई और नई पहचान अता करती है। ऐसी ही एक दिलकश और पुरकशिश कला है नाइफ और टेक्सचर पेंटिंग।
4: जी बिल्कुल, यह कला अपनी उभरी हुई बनावट, गहराई और खूबसूरत असर की वजह से खास पहचान रखती है। जब किसी तस्वीर को देखा जाए और उसमें रंगों की परतें, उभार और बनावट को साफ महसूस हो, तो वह अपनी तरफ बरबस तवज्जो खींच लेती हैं।
3: नाइफ पेंटिंग में आमतौर पर देखो ना, ब्रश की जगह पैलेट नाइफ का इस्तेमाल किया जाता है।
4: अगर मैं बात करूं मकसूदन नाइफ की, तो ये चाकू नहीं है, ये एक फ्लैट नाइफ की तरह दिखने वाला एक उपकरण है, जिससे हम पूरी तरह से पेंटिंग कर सकते हैं और सीधी सीधी फ्लैट पेंटिंग कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, जो ये नाइफ पैलेट है, इसकी मदद से रंगों को कैनवास पे फैलाया जाता है, परत दर परत सजाया जाता है और मुख्तलिफ अंदाज में आकार दिए जाते हैं। यही वजह है कि तस्वीर में एक अलग ही रौनक और जिंदा दिली नजर आती है।
4: वहीं टेक्सचर पेंटिंग में रंगों के साथ ऐसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे सतह पर उभार और गहराई पैदा होती है। फूलों की नजाकत, कुदरती मंजर, अमूर्त डिजाइन और जदीद कला।

0: आत्मक अभिव्यक्तियां इस अंदाज में बेहद खूबसूरती से पेश की जाती हैं।
1: आज के दौर में नाइफ और टेक्सचर पेंटिंग महज एक कला शैली नहीं रही, बल्कि अपने एहसासात और तखयल को बयां करने का एक असरदार जरिया बन चुकी है। फनकार रंगों की परतों और बनावट के जरिए अपने ख्यालात को एक नई जिंदगानी देता है ना?
0: और शायद इस कला का सबसे खास पैगाम भी यही है मकसूदन, कि खूबसूरती हमेशा एक जैसी और हमवार नए सतहों में नहीं होती। कभी कभी रंगों की अनगढ़ परतें, उभरे हुए नक्श और अलग अलग बनावटें भी ऐसी दिलकशी पैदा कर देती हैं जो देखने वाले के दिल पर गहरा असर छोड़ जाती हैं।
1: सखियो, नाइफ और टेक्सचर पेंटिंग हमें यह एहसास दिलाती है कि तख्लीक की दुनिया में हर परत की अपनी अहमियत होती है। जब रंग, कल्पना और हुनर एक साथ मिलते हैं, तो एक साधारण कैनवास भी कला का बेहतरीन नमूना बन जाती है।
0: ये तो हुई मॉडर्न आर्ट की बात मकसूदन, और हमारी जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं वो भी बहुत फेमस हैं। ऐसी ही एक कला है तेलंगाना की, चोरियाल स्क्रॉल कला। इस कला में लंबे कपड़े के स्क्रॉल पर प्राकृतिक रंगों से पौराणिक कथाएं, लोक कथाएं और सामाजिक प्रसंग चित्रित किए जाते हैं। चित्रों की रूपरेखा पहले बनाई जाती है और फिर उनमें चमकीले रंग भरे जाते हैं।

0: नहीं बल्कि लोक कथाओं, आस्था और हमारी सांस्कृतिक विरासत का चलता फिरता दस्तावेज है।
1: सखियों, फट चित्रकला राजस्थान की एक प्राचीन लोक कला है जिसमें लंबे कपड़े पर लोक देवताओं, वीर गाथाओं और ऐतिहासिक प्रसंगों को चित्रों के माध्यम से उकेरा जाता है। ये कला सदियों से हमारी परंपराओं की को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करती है।
0: और फड़ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें हर चित्र अपने भीतर एक पूरी दास्तान समेटे होता है। रंगों और आकृतियों के जरिए कलाकार ऐसे मंजर तख्लीक करता है कि देखने वाला खुद को उसी कहानी का हिस्सा महसूस करने लगता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: इस कला में लाल, पीले, हरे और नारंगी जैसे चटाक रंगों का इस्तेमाल खास तौर पर किया जाता है। यही रंग फड़ को उसकी अलग पहचान और रौनक अता करता है।
0: तस्वीरों में जब तहजीब का उजाला मिलता है तो गुजरा हुआ जमाना फिर दोबारा मिलता है। सखियों, फड़ चित्रकला हमें अपनी जड़ों से जोड़ने वाली एक अनमोल धरोहर है जिसे सहेजना और आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: मकसूदन, बात हो रही है राजस्थान की, तो अब राजस्थान से लेकर मैं आपको ले चलती हूँ मध्य प्रदेश की ओर, वहाँ की गोंड चित्रकला की ओर। गोंड कला में बिंदु, रेखाएं और सूक्ष्म पैटर्न का प्रयोग करके पेड़ पौधे, जानवर, देवता और प्रकृति से जुड़े चित्र बनाए जाते हैं। इसमें चमकीले रंगों का प्रयोग विशेष रूप से होता है।

सखियों, राजस्थान की मिट्टी में रचे बसे रंगों की बात हो और फड़ चित्रकला का जिक्र ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। फड़ सिर्फ एक चित्रकला।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सखियों, बात करते हैं एक ऐसी कला की जिसमें भक्ति, सौंदर्य और रंगों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं पिछवाई का चित्रकला की।
4: पिछवाई चित्रकला का रिश्ता श्री नाजी की आराधना से जुड़ा हुआ है। कपड़े पे बनाई जाने वाली भव्य चित्र कृतियां मंदिरों की शोभा बढ़ाने के साथ साथ भारतीय कला की नफासात को भी बयां करती है, है ना?
3: बिल्कुल। पिछवाई में कमल, गाय, मोर, वृंदावन के दृश्य और श्री कृष्ण लीला के विविध रूप बेहद खूबसूरती से दर्शाए जाते हैं। बारीक कारीगरी और रंगों का संतुलन इसे विशेष बनाता है।
4: इस कला को देखकर ऐसा महसूस होता है ना ज्योत्सना, जैसे रंग इबादत का रूप ले चुके हैं।
3: बिल्कुल।
4: हर रंग में श्रद्धा और हर रंग में अपना पंज लगता है। कलाकार महीनों की मेहनत से एक चित्र को मकमूल करता है, तभी उसकी असली चमक सामने आती है, है ना?
3: बिल्कुल। आज पिछवाई कला देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। यह हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और कलात्मक उत्कृष्टता का शानदार उदाहरण है।
4: सखियों, पिछवाई हमें यह एहसास कराती है कि जब कला और आस्था एक साथ मिलते हैं ना, तो रंग भी रूहानी एहसास बन जाते हैं।
3: बिल्कुल। और इसी तरह से मकसूदन श्रीनाथ जी

जुड़ी हुई एक और चित्रकला है, ओडिशा की पट चित्रकला, जिसमें पट चित्र में आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा कि ये कपड़े पर की जाती है। यहाँ ताड़ पत्र पर प्राकृतिक रंगों से सूक्ष्म रेखाओं के साथ भगवान जगन्नाथ, कृष्ण लीला और पौराणिक कथाओं का चित्रण किया जाता है।

0: सखियों अब रुख करते हैं बिहार के उस मशहूर लोक कला की तरफ, जिसने अपनी सादगी और खूबसूरती से पूरी दुनिया में पहचान बनाई, मधुबनी चित्रकला।
1: मधुबनी कला की शुरुआत मिथिला क्षेत्र से मानी जाती है। इस चित्रकला में कुदरत, लोक जीवन, पर्व त्योहार और पौराणिक प्रसंगों को बेहद आकर्षक अंदाज में चित्रित किया जाता है।
0: और इस मधुबनी चित्रकला की एक खास बात और है, इसकी बारीक रेखाएं और रंगों का जो अनूठा इस्तेमाल है और जो पारंपरिक रूप से इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग है, इसकी अलग पहचान देता है, जिससे चित्रों में एक अलग पहचान झलकती है।
1: मछलियाँ, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा और लोक जीवन से जुड़े अनेक प्रतीक मधुबनी कला का अहम हिस्सा होते हैं। हर आकृति अपने भीतर कोई ना कोई संदेश और अर्थ समेटे हुए होती है।
0: रंगों की जुबां होती है, तस्वीरें भी बोलती हैं, खामोशी रेखाएं

0: भी दास्तानें खोलती है।
1: वाह
0: मधुबनी
1: वाह।
0: कला सिर्फ सजावट नहीं बल्कि लोक संस्कृति और परंपराओं की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह
1: और
0: हमें बताती है कि हमारी विरासत जितनी पुरानी है ना उतनी ही रंगीन और समृद्ध भी है।
1: और यही वजह है कि आज मधुबनी चित्रकला दुनिया भर में भारतीय लोक कला की पहचान बन चुकी है, जो अपनी सादगी में भी बेमिसाल खूबसूरती समेटे हुए है। और बात हो रही है बिहार की, तो मैं आपको ले चलती हूँ गुजरात, गुजरात की रोगन कला की ओर। रोगन कला में अरंडी के तेल से तैयार गाढ़े रंगों के पेस्ट की धातु को सलाई या विशेष उपकरण की सहायता से कपड़े पर उकेरा जाता है। इसमें फूल, बेल बूटे और पारंपरिक डिजाइन बनाए जाते हैं।

0: सबको छोड़।
1: मकसूदन, पानी के रंगों की बात हो रही है तो मैं आपको ले चलती हूँ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कालीघाट चित्रकला बनाई जाती है, जिसमें कागज़ पर पानी के रंगों और स्याही को उपयोग किया जाता है। इसमें मोटी भारी रेखाएं, सरल आकृतियां तथा सामाजिक और धार्मिक विषय प्रमुख होते हैं।
0: जहाँ रेत भी किस्से सुनाती है, जहाँ हवाएं भी तहजीब का पैगाम लाती हैं, उस राजस्थान की फिजाओं में आज भी कला और संस्कृति की खुशबू महकती है। राजस्थान केवल वीरता और शौर्य की धरती नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का भी एक शानदार मरकज है। यहाँ हर कला अपने भीतर इतिहास की रिवायत, फनकारी की खूबसूरती दास्तान समेटे हुए है।
1: चाहे रंगों से सजी चित्रकला हो, बोलती हुई कठपुतलियां हो, या फिर नीले रंग की दिलकश ब्लू पॉटरी, हर कला अपने अंदाज में दिलों को छू जाती है। राजस्थान की चित्रकला अपनी नफासत और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की फर्श चित्रकला, लघु चित्रकला और पारंपरिक भित्ति चित्र केवल रंगों का मेल नहीं, बल्कि इतिहास और लोक जीवन की जिंदा तस्वीरें हैं।
0: जब कलाकार अपनी कूची से रंगों को कैनवास पे उतारता है ना, तो ऐसा लगता है मानो कोई पुरानी दास्तान फिर से जिंदा हो गई है। इन चित्रों में राजाओं की शान, लोक देवताओं

0: की महिमा और गांव की सादगी और प्रकृति का हुस्न एक अलग ही नजारा देता है ना।
1: बिल्कुल, रंगों में कुछ ऐसे जज्बात पिरोए जाते हैं कि खामोश चित्र भी अफसाने सुनाए जाते हैं। जयपुर की ब्लू पॉटरी भी ऐसी ही कुछ है। राजस्थान की सबसे खास और दिलकश कलाओं में से एक है ब्लू पॉटरी।
0: तो
1: इसकी
0: आपको कोई नाम याद आ रहा है
1: बिल्कुल
0: इसमें?
1: कृपाल सिंह शेखावत जी का नाम याद आ रहा
0: हाँ,
1: है,
0: वो बड़े
1: जो
0: मशहूर कलाकार हैं
1: बिल्कुल
0: इसके,
1: इसकी
0: जिन्होंने इसको पूरे विश्व में पॉपुलर किया
1: जी
0: है।
1: इसकी पहचान इसका गहरा नीला रंग और नाजुक डिजाइन है। फूल, पत्तियां, बेल, बूटे और पारंपरिक आकृतियां जब इन कलाकृतियों पर उभरती हैं तो देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। ब्लू पॉटरी केवल एक हस्तशिल्प नहीं बल्कि कलाकार की मेहनत, सब्र और मोहब्बत का नतीजा है। हर वस्तु अपने भीतर फनकारी की एक अलग ही कहानी।

0: याद आ रहा
1: हाँ
0: है
1: वो
0: कि
1: बड़े
0: जो
1: मशहूर कलाकार हैं
0: बिल्कुल
1: इसके,
0: इसकी
1: जिन्होंने इसको पूरे विश्व में पॉपुलर किया
0: जी
1: है।
0: इसकी पहचान इसका गहरा नीला रंग और नाजुक डिजाइन है। फूल, पत्तियां, बेल, बूटे और पारंपरिक आकृतियां जब इन कलाकृतियों पर उभरती हैं तो देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। ब्लू पॉटरी केवल एक हस्तशिल्प नहीं बल्कि कलाकार की मेहनत, सब्र और मोहब्बत का नतीजा है। हर वस्तु अपने भीतर फनकारी की एक अलग ही कहानी समेटे रहती है। मिट्टी के रंगों में एक ऐसा असर होता है, हर बर्तन में जैसे कोई ख्वाब मुकम्मल होता है।
1: क्या बात है, राजस्थान की ये कलाएं हमें अपनी जड़ों जड़ों से जोड़ती है। ये सिर्फ कला नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारी तहजीब और हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। आज ज़रूरत है इस बात की कि हम इन कलाओं को सराहें, कलाकारों का हौसला बढ़ाएं और आने वाली नस्लों तक इस अनमोल धरोहर को पहुंचाएं। कला ही संस्कृति की पहचान रहती है, इसी से हर दौर में अपनी शान रहती है। जो अपनी विरासत को दिल से संभाल लेते हैं ना, उनकी पहचान हमेशा बरकरार रहती है।
0: बिल्कुल।

0: कुछ नया सी
1: सखियों, आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में कला हमें ठहरना, महसूस करना और स्वयं से जुड़ना सिखाती है। चाहे वह आर्ट थेरेपी के माध्यम से मन की गहराइयों को समझना हो, या फिर आर्ट कैफे में रंगों के साथ कुछ खुशनुमा पल बिताना हो, कला हर रूप में जीवन को अधिक सुंदर और अर्थपूर्ण बनाती है।
0: सखियो, रंगों, रेखाओं और रचनात्मकता के सजे हुए खूबसूरत सफर में आज का समय यहीं समाप्त होता है। फन सिर्फ देखने की चीज़ नहीं, बल्कि महसूस करने का नाम भी है। हमारी यही दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में रंग इसी तरह बिखरते रहें और इस तरह ही आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो।
1: आज के पूरे इस कार्यक्रम में हमें सहयोग दिया कंट्रोल रूम से फारूक शेख, फारूक अहमद शेख ने, HPT से सुनील जयपाल ने और दिलीप सिंह परमार ने, कंसोल से आपको मीठे मीठे गीत सुनाए साक्षी परिहार ने, और इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीष सोलंकी ने।
0: इसी मोहब्बत और अपनायत के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए नारी वाटिका और यूं ही जुड़े रहिए अपने हुनर, अपनी पहचान और अपनी रचनात्मकता के साथ।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: का जोधपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: प्रवति परिदा जी, ओडिशा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान

0: मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
1: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति के समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परम्पराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय

0: योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
1: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाईब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
2: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को

0: 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए सबसे पहले सुनिए हंगामा फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, बोल हैं समीर के, संगीत नदीम श्रवण का।

लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में गर्व प्राइड एंड ऑनर फिल्म का ये गीत। बोल है शब्बीर अहमद की, संगीत है साजिद वाजिद का।

अभी आप सुन रहे थे मैंने प्यार क्यों किया फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी अलका याग्निक और कमल खान की, बोल थे समीर के, और संगीत था हिमेश रेशमिया का।

लीजिए अब सुनिए मुझसे शादी करोगी फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, बोल हैं अर्जुन के, संगीत है साजिद वाजिद का।

आइए अब अगला गीत सुनते हैं पार्टनर फिल्म से। आवाज़ें हैं श्वेता पंडित और सुजू की, और बोल हैं शबीर अहमद के, संगीत है साजिद वाजिद का।

लीजिए फिल्म संगीत के अंत में सुनिए हलचल फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं उदित नारायण और सुजाता की, बोल हैं समीर के, संगीत है विद्या सागर का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। हमारी आज की पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुने युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी, जहां मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर डॉली। और आज यहाँ मेरे साथ है
1: यश थानवी। जी हाँ दोस्तों, आज हम करेंगे ढेर सारी बातें। और क्योंकि है वीकेंड, तो वीकेंड किस तरह से एंजॉय आप कर सकते हैं और कैसे इस वीकेंड को जो है वो और भी खास बना सकते हैं इस तपती गर्मी के अंदर भी, उसके बारे में भी हम करेंगे कई सारी बातें। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए ये प्यारा सा गीत।

0: हम सब जानते हैं कि वाणी युवाओं का कार्यक्रम है जहां हम सब मिलते हैं, हम आपसे मिलते हैं, आप हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं, गाने सुनते हैं और अब जो शाम है उसको और भी खास बनाते हैं।
1: बिल्कुल। और डॉली, क्योंकि आजकल के बच्चे हम देखते हैं कि जैसे कि हर बच्चे की अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, तो हर बच्चे जो है वो घूम के आ जाते हैं, बाहर कहीं टूर करके आ जाते हैं या फिर वैकेशन मना के आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी घर पे उनको बोर होने लगता है, उनको लगता है कि क्या करें, और उस वक्त वो केवल और केवल मोबाइल और सोशल मीडिया के आदि होते जाते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमारे बचपन में जब हमारे पास मोबाइल नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो हम लोग क्या किया करते थे, हम बाहर जाके गेम्स खेला करते थे। जैसे कि कई सारे ऐसे गेम्स हैं जैसे कि छुपम छुपाई हुआ, या फिर संतोलिया हुआ, या फिर गिल्ली डंडा हुआ, या क्रिकेट हुआ, जो आजकल के बच्चे केवल और केवल मोबाइल पे कुछ गेम्स खेलकर ही अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन उनको ऐसे गेम्स सिखा सकते हैं जिससे कि वो अपनी शरीर की कसरत भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनका जो दिमाग है वो भी उससे तेज होगा।
0: बिल्कुल यश, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने एक वर्ड बोला था, बोर होने वाला। क्या बोर होना ज़रूरी है या नहीं है, या हमारे लिए सही है नहीं है, या ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, सबके साथ हो रही है। क्योंकि हमें क्या है ना, पहले के टाइम पे जब हम भी नहीं थे तो पहले के टाइम पे डिवाइसेस नहीं होते थे, तो क्रिएटिविटी का काम करते थे या चीज़ों को इनोवेशन पे ध्यान देते थे। आज भी होता है
1: बिल्कुल
0: वो, बट स्टिल आज का क्या, डिवाइसेस बहुत ज़्यादा आ गए, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ गए, तो बोर्डम को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। और एक्चुअली बोर्डम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्रिएटिविटी के लिए। अगर हम बोर नहीं होंगे तो हमें लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने का ख्याल ही नहीं आएगा और हम क्रिएटिव काम करेंगे ही नहीं।
1: बिल्कुल। और पहले क्या होता था, जब हम बोर होते थे तो हम अपने फ्रेंड्स को बात करते थे, उनके घर पे जाते थे, और सब फिर मिलके सब लोग खेलते थे। तो उससे क्या होता था कि आजकल के बच्चों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एनजाइटी बहुत ही छोटी सी उम्र से शुरू हो जाती है, वो पहले बच्चों को इनके बारे में नॉलेज ही नहीं था, क्योंकि वो बच्चे हर बात अपने दोस्तों के साथ में साझा कर देते, या फिर गेम्स के थ्रू वो बातें भूल जाते थे जो भी टेंशन उनके दिमाग में होती थी। तो हमें भी ये करना चाहिए कि इन छुट्टियों के मौसम में जो है वो अपने बच्चों के साथ में जाकर, या तो गली मोहल्ले में उनके साथ में हम खुद खेलें, जिनसे कि उनको ये पता चले कि पहले इस तरह के गेम हुआ करते थे, और फिर धीरे धीरे वो भी इन गेम्स को खेलने लगेंगे और उनकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने लगेंगी।

0: वेलकम बैक टू युवानी दोस्तों. मेरे को एक आइडिया आया है यश. वो आइडिया ये है कि अगर मान लो कल सुबह अगर सोशल मीडिया कंप्लीटली ऑफ कर दी जाए तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा?
1: अगर सोशल मीडिया कम्प्लीटली ऑफ कर दी जाए तो मुझे शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मोबाइल बंद कर दिया जाए तो शायद मेरी जिंदगी में एक तरह से बवाल आ जाएगा।
0: हाँ बिल्कुल, वो तो होता ही है क्योंकि मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स रहते हैं
1: हाँ
0: हमारे.
1: हाँ
0: लेकिन सोशल मीडिया से तुम्हें इतना फर्क क्यों नहीं पड़ेगा?
1: क्योंकि मैं इतना व्यस्त रहता हूँ और इतना मेरे पास में काम रहता है कि मेरे पास में इतना समय ही नहीं रहता कि मैं सोशल मीडिया को यूज़ कर पाऊँ।
0: बेसिकली तुम एडिक्टेड नहीं हो सोशल
1: हाँ
0: मीडिया के, इतना यूज ही नहीं करते तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा.
1: बिल्कुल
0: लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा यूज करते हैं. मीडियम मीडियम लेवल पे भी अगर वो यूज करते हैं तो अगर
1: बिल्कुल
0: बंद करने कर दिया तो उन्हें बहुत फर्क
1: बिल्कुल
0: पड़ेगा.
1: बहुत फर्क पड़ेगा। और कई सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ये भी फर्क पड़ता है कि आज उनकी फ्रेंड ने क्या पोस्ट डाली है, क्या स्टेटस लगाया है, उससे भी उनको लगता है कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। ये सब जानने की सबको कोशिश रहती है।
0: बिल्कुल, खुद की लाइफ पे तो हम फोकस कर नहीं पाते या हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं या कुछ भी इसको समझ लीजिए, लेकिन दूसरों की लाइफ पे हम बहुत फोकस रखते हैं. और बल्कि हम इतना डिपेंडेंट हैं इन सब चीज़ों पे कि हम खुद ही नहीं जानते.
1: बिल्कुल। और इस सब में क्या होता है कि हम खुद की लाइफ को जीना भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल. और एक और चीज़ है कि कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि मान लो हमारा फ़ोन ख़राब हो जाए, टूट जाए, या फिर कुछ ऐसा हो कि हमारे पास ना हो हमारा फ़ोन, तो हम फील करते हैं. पहले तो हमें बहुत रेस्टलेसनेस होती है कि हमें बहुत एन्जाइटी टाइप फील होता है कि कुछ ऐसा है जो मिसिंग है. एक दो दिन तो वैसा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद हमें थोड़ा प्रोडक्टिव फील होने लगता है. हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ खालीपन है जिसको क्रिएटिविटी काम या फिर कुछ अच्छे प्रोडक्टिव काम के साथ उसको फिल
1: बिल्कुल
0: किया जा
1: बिल्कुल।
0: सकता है.
1: और मुझे लगता है कि उसी वक्त हमको पता चलता है कि फोन के अलावा भी करने के लिए बहुत सी कुछ चीजें हैं।
0: बिल्कुल, फ़ोन वो इम्पोर्टेंट टाइम हमारा ले रहा है जो हम बहुत ही अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते
1: बिल्कुल।
0: हैं.
1: या फिर हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर हम बुक्स लिख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जो फोन की वजह से हम नहीं कर पाते हैं।
0: तो श्रोताओं, आप भी अगर ऐसा महसूस करते हैं तो आप भी सोचिए और ब्रेक भी ले सकते हैं सोशल मीडिया से. सोचिए कि ऐसे क्या काम हैं जो सोशल मीडिया या फ़ोन की वजह से वो आप नहीं कर पा रहे हैं.
1: बिल्कुल। और ट्राई कीजिए कि एक दिन वीक में ऐसा रखिए जिस दिन आप सोशल मीडिया को यूज़ ही ना करें, और फिर महसूस कीजिए कि उस दिन में आपने क्या-क्या किया है।

0: वेलकम बैक टू यू वाणी।
1: जी हाँ श्रोताओं, तो आजकल हम सोचते हैं या देखते हैं कि कई सारे बच्चे जो हैं वो बचपन में अगर कोई खिलौने बनाना शुरू कर देते हैं या फिर कोई मैकेनिक काम करने लगते हैं या फिर ड्राइंग बनाने लगते हैं या फिर उनको कोई पेड़ पौधे उगाने का शौक़ होता है, तो हर कोई माता पिता या रिलेटिव ये सोच लेता है कि आगे जाके इंजीनियर बनेगा, पेंटर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। मतलब बच्चे के दिमाग में पहले से ही बात डाल दी जाती है कि आपको इस चीज़ का शौक़ है तो आपको यही बनना है। लेकिन आज हमें ये सोचना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी हॉबी या पैशन को अपना करियर ही बनाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अगर हम अपनी हॉबी या पैशन को अपना करियर बनाते हैं तो आप बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाते हैं, आप उसको बिजनेस समझने लगते हैं और आपका जो एन्जॉयमेंट होता है उस पैशन या हॉबी में वो धीरे धीरे खोने लगता है।
0: बिल्कुल। और हर बार हम ये सोचने लगते हैं बहुत कैलकुलेटिव वे में, कि हिसाब लगाते हैं कि क्या आगे फ्यूचर में इसका मुझे कुछ करना है, नहीं तो मैं अभी इसको क्यों करूं। हम ये नहीं समझते, या फिर हमारे आसपास वाले या कोई भी हमें ये चीज़ अगर हमारे दिमाग में डाल दे कि इस तरह के क्वेश्चन कि अगर आप डांस कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या होगा फ्यूचर में, या फिर अगर आपने डांस करना छोड़ दिया तो अगर इतने समय तक आपने किया था तो क्यों किया था, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरह की बहुत सारे हमें नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ हमारे लिए वो चीज़

0: करनी है। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा उस चीज़ को कैलकुलेटिव वे में ही लें।
1: बिल्कुल डॉली, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आप अपने पैशन को करियर बनाना चाहते हैं तो वो और भी अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर भी आप उसके अंदर इस तरह से सोचिए कि आप उतना ही उसको दिमाग में लें जितना कि आप उसको कर पाए। लेकिन अगर आपको एंजॉय करना है तो आप ऐसी कोई हॉबी ज़रूर रखें जिससे कि आप अपने जीवन में एक एंजॉय फील कर सकें। तो इसके लिए आप जो है अपने करियर में अपने पैशन को लेकर आइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि उस पैशन का जो एन्जॉयमेंट है वो कहीं खो ना जाए।

0: तो दोस्तों, ऐसा बहुत बार आपको भी लगता है क्या जो मुझे लगता है कि कई बार जो हम जो हैं सुबह उठते हैं या फिर अचानक से कोई गाना या फिर कोई म्यूज़िक सुन लेते हैं और फिर पूरे दिन जो है वो हमारे कानों में गूंजता रहता है, या फिर बार बार वो लिरिक्स या वो धुन हमारे दिमाग में आती रहती है और हम उसे गुनगुनाने लगते हैं, तो इसको क्या कहते हैं डॉली?
1: बिल्कुल सही तुमने यूज़ किया है अभी वर्ड कि बार बार रिपीट होता रहता है या बार बार एक ही चीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहती है। ऐसा आखिर इसलिए होता है। एक्चुअली इस फिनोमेना को साइंस में कहते हैं ईयर वॉर्म। ईयर वॉर्म का मतलब होता है कि कोई गाना या उसकी कोई लाइन बिना चाहे बार बार दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है, और बस चलती ही रहती है। चाहे वो गाना बंद हो जाए, हम चाहे पढ़ने लग जाएं, कहीं कोई काम पे चले जाएं, चाय कॉफ़ी पी रहे हों, किसी से बातें ही क्यों ना कर रहे हों, हमें पता नहीं चलता, लेकिन बैकग्राउंड में वो चीज़ चलती रहती है, चलती रहती है।
0: जी हाँ श्रोताओं, अगर आपको भी ऐसा बहुत बार फील होता है या आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो इसको जो है ईयर वॉर्म कहते हैं, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो ब्रेन से बहुत जल्द कनेक्ट हो जाता है, इसलिए जो है वो आपके दिमाग में बार बार चलता रहता है। और ये अक्सर जब होता है जब आप सुबह सुबह उठते ही या फिर सुबह के टाइम अचानक से कोई भी गाना या धुन सुन लेते हैं, तो उस वक्त आपका ब्रेन एक्टिव रहता है और उस वक्त जो आपके दिमाग में जाता है वो प्रोसेस हो जाता है और वही दिमाग में दिन भर चलने लगता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा।

0: तीन महीने में पैसे डबल,
1: वाह,
2: फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
0: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
3: और कल होगा भी नहीं।
0: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
4: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
0: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
3: और फास्ट रिटर्न से बच के
0: और फास्ट बॉलिंग से भी।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: यश, तुम्हें पता है आजकल ना बहुत ही बढ़िया सी एक डिबेट चल रही है, और वो ये है कि फोमो वर्सेस जोमो, जिसमें से फोमो तो सबको पता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये जो जोमो है वो नया नया सा लग रहा है।
7: डॉली, जोमो जो है वो है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। मतलब सबको दुख या डर तो रहता ही है कि मैं यहाँ पे नहीं था, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको खुशी भी होती है, आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि मैं वहाँ पर नहीं था। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे युवा साथी या फिर बच्चे स्कूल की या कॉलेज की छुट्टी लेते हैं और उसी दिन उनको पता चलता है कि कॉलेज या स्कूल में सरप्राइज टेस्ट था, तब महसूस होता है जोमो की, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, कि वाओ मैं आज नहीं गया और सरप्राइज टेस्ट था।
6: बहुत बढ़िया हुआ वो तो। और लेकिन फोमो का भी तो एग्जांपल होना चाहिए ना बढ़िया सा।
7: हाँ, फोमो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली फंक्शन होते हैं या फिर हमारे कजिन की शादी होती है और हमारे एग्जाम आ जाते हैं उसी वक्त, तब हमें महसूस होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
6: बिल्कुल, तो ये तो हमने सॉल्व कर दी फोमो वर्सेस जोमो। और भी ऐसे टॉपिक्स, थोड़े से साइंस रिलेटेड, थोड़े से फनी, थोड़े इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद।

0: यश एक बात बताओ, हमें हिचकी क्यों आती
1: हिचकी,
0: है?
1: जब हमको कोई याद करता है तो हिचकी आ जाती है।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये बात नहीं है। देखो, इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे लंग्स के नीचे एक मसल होती है, जैसे उसे कहते हैं डायफ्राम, और ये मसल हमें सांस लेने में, जो हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, उसमें हेल्प करती है। और कभी कभी डायफ्राम अचानक और बिना कंट्रोल के कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हवा तेज़ी से अंदर आ जाती है और हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है वो तुरंत बंद हो जाते हैं, और फिर एक आवाज़ निकलती है, हिक हिक, तो वो हिचकी बन जाती है।
1: लो, और मैं अब तक सोच रहा था कि हर बार जब मुझे हिचकी आती है तो कोई ना कोई मुझे याद कर

0: होता है, और इसी में मैं खुश हो जाता था कि यार मुझे कोई याद कर रहा है।
1: क्या बात है। हालांकि ये भी ऐसे सोचा जाए तो बढ़िया ही है, जिसने भी ये शुरू किया होगा ना, बढ़िया किया।

0: लेक्सिंग।
1: स्ट्रेस लेक्सिंग, ये तो रिलैक्सिंग से थोड़ा मैच लग रहा है।
0: हाँ ये है तो कुछ वैसा ही लेकिन थोड़ा अलग है।
1: इसमें ये होता है स्ट्रेस लेक्सिंग में कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो हैं वो आराम से लेटे रहते हैं, रिलैक्स करते रहते हैं, लेकिन हमको ये टेंशन होने लग जाती है कि हम रेस्ट क्यों कर रहे हैं, रिलैक्स क्यों कर रहे हैं। मतलब रिलैक्स करते हुए हमें टेंशन या स्ट्रेस होने लग जाता है इस बात का कि हम रिलैक्स क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें दिमाग में होता है कि हमें काम करना है या फिर युवा साथियों को कोई पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, लेकिन फिर भी वो रेस्ट करते रहते हैं, और रेस्ट करते करते उनको टेंशन और स्ट्रेस रहता है कि मुझे काम कर रहा है, मैं रेस्ट क्यों कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल, एक्चुअली करना क्या चाहिए कि हमें जाकर पढ़ाई कर लेनी चाहिए या
1: बिल्कुल,
0: हमें काम कर लेना चाहिए, वो तो हम करेंगे नहीं।
1: लेकिन हम करेंगे स्ट्रेस लेक्सिंग।
0: बिल्कुल, क्या बात है, क्या नया वर्ड है, आप भी यूज़ कर सकते हैं इसको।
1: हाँ, ये सुनने में ही अच्छा लगता है, लेकिन कीजिएगा मत।

0: डॉली आजकल ऐसा होता है कि बहुत बार मैं जो है कुछ सर्च करने या कुछ देखने के लिए मोबाइल लेता हूँ और अचानक से मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या सर्च करना था। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई शब्द किसी को बताना होता है, कोई वर्ड जो मेरे दिमाग में था और अचानक से मेरी जबान पे नहीं आ पाता है, मैं एकदम ब्लैंक हो जाता हूँ और मुझे याद नहीं आ पाता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा था।
1: बिल्कुल, देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट में सबके साथ होता है कि हम करने कुछ जाते हैं और भूल जाते हैं, करके कुछ और ही आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल। जैसे एक बात बताऊँ, ये मुझे लगता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, हर सेकंड आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती जा रही जाती जा रही है। तो एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करे, उसको प्रोसेस करे, उसका जो भी पूरा प्रोसेस है वो होए, उससे पहले तो दूसरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो कौन सी इम्पॉर्टेंट है, ये तो फिगर आउट करने का टाइम ही नहीं
0: बिल्कुल
1: मिलता।
0: बिल्कुल। और हम इतनी फिजूल इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते जाते हैं सोशल मीडिया शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, जिससे कि हमारा दिमाग जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको एग्जिट करता जाता है। जो इन्फॉर्मेशन हमको याद करनी है वो सब हम भूलते जाते हैं।
1: बिल्कुल, और साइकोलॉजिस्ट इसे एक टर्म भी देते हैं, उसका नाम है डोरवे इफेक्ट। इसको डोरवे इफेक्ट बोलते हैं कि जब हम कुछ इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट लगती है हमारे ब्रेन को, वो स्टोर करने के लिए बाकी जो चीज़ें हैं वो भूलने लगते हैं।
0: बिल्कुल। और जब हम उसे याद करते हैं तो हमारे दिमाग से ब्लैंक हो जाती है।
1: बिल्कुल,
2: जगाती है कयामत कोई।

0: श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी अब हमें इशारा कर रही है कि हमारे जाने का वक्त हो चला है, जहां आज हमने सुने प्यारे प्यारे से चटपटे गाने और की आपसे ढेर सारी बातें। और मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर डॉली।
1: मैं था यश थानवी। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन था राजेश लामरोड का।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। शाम के 6 बज रहे हैं। प्रस्तुत है समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी।

0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देशभर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पास ने देशभर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government in the presence of Mr. Modi, the President said, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship. Addressing the public gathering, Prime Minister Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India.
1: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
2: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around

आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय चित्र पत्रिका चित्र भारती। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

चौपाल कार्यक्रम के लिए समय रहेगा 7 बजे और सीमा डेरी गूंज ये कार्यक्रम प्रसारित होगा 7:30 पर।

मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:30 पर होगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के कोलकाता रेड रोड से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय स्तर के समारोह में देश भर में एक साथ सामूहिक योग प्रदर्शन के ऑफ ट्यूब कमेंट्री का सीधा प्रसारण। शाम 7 से आईसीसी विमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण होगा। सुबह 8:30 से मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार होगा, जिसमें आकर्षण का केंद्र होगी भेंट वार्ता, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष बातचीत, योग गुरु मुक्ता माथुर से लीना माथुर की बातचीत। सुबह 10 होगा बच्चों के लिए खास कार्यक्रम चुनमन, कृषि जगत कार्यक्रम के लिए समय रहेगा 1:05। 1:15 पर महिलाओं का कार्यक्रम नारी वाटिका होगा, जिसमें होगी एक वार्ता। वार्ता का विषय रहेगा बुजुर्ग महिलाओं में योग से लाभ। वार्ताकार होंगी श्रीमती अलीशा सोलंकी और साथ ही होगी एक फोन आउट बातचीत। बातचीत का विषय रहेगा सिंगल पेरेंटिंग में एक पिता की भूमिका और चुनौती। विषय विशेषज्ञ दयाराम गर्ग से मधु बनर्जी की बातचीत। युववाणी के लिए समय रहेगा शाम 5:00।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है देशकांत।

समूह स्वर में अभी आपने सुना देशगान। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर।

0: समूहं सम्बोधयन् श्रीशाहः अवदत् यत् विकास परियोजनैषा ऐतिहासिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक परम्परायाः संरक्षणं कुर्वन्ति। मन्दिर परिसरम् आधुनिक तीर्थस्थान रूपेण प्रवर्तयिष्यतीति। षड्विंशत्यधिक द्विसहस्रतम वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः श्वः सम्पूर्णे विश्वे आचर्यते। अस्मिन् वर्षे द्वादशः अन्ताराष्ट्रियः योग दिवसः आचर्यते, यस्य विषयः स्वस्थ्य जीवनाय योगः इत्यस्ति। यो हि समेषाम् आयुवर्गाणां कृते योगस्य महत्वं प्रतिपादयति। उत्सवस्यां स्वरूपेण संस्कृति मन्त्रालयः भारतस्य समृद्धां सांस्कृतिक योग परम्परां च संगृह्य देशस्य शत प्रतिष्ठित स्थानेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य विशेष कार्यक्रमाणाम् आयोजनं विधास्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः श्वः मध्यप्रदेशस्य जबलपुर नगरे राज्यस्तरीयस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण स्थास्यति। कार्यक्रमः प्रातः सार्ध सप्तवादनतः सदर क्षेत्रस्य गैरिसन ग्राउण्ड इत्यत्र आरप्स्यते। अद्य सायंकाले राष्ट्रपतिः तत्र प्राप्स्यति, यत्र राज्यपालः मंगूभाई पटेलः विमानस्थानके तस्याः स्वागतं करिष्यति। भारतं सोमवासरादारभ्य द्विदिवसीयं ब्रिक्स राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदानां सम्मेलनम् आयोजयति। अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षः राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः अजीत डोभालः भविष्यति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः पर्यन्तम् उपहिमालयीय पश्चिम बंगस्य सिक्किम राज्यस्य च पृथक् पृथक् स्थानेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया पूर्वसंचेतना प्रदत्तास्ति। ऋतुविभागेन दिने केरल माहे तमिलनाडु पुदुच्चेरी करैक्कल प्रदेशेषु पूर्वोत्तर भागेषु च प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् अस्ति। हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब दिल्ली उत्तराखण्ड पूर्वी मध्यप्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेशेषु च विद्युद्योतनेन सह मेघगर्जनस्य संभावना ऋतुविभागेन प्रकटिता। बिहार आंध्रप्रदेश उत्तरांतरिक कर्नाटक तेलंगाना विदर्भ अंडमान निकोबार द्वीपेषु च आगामि दिनद्वयोः एतादृशी स्थितिः भविष्यति। ब्राजील देशः अद्य फिलाडेल्फिया क्रीडांगणे हैति देशस्य उपरि 3-0 इत्यंकैः सहजतया विजयं प्राप्य फीफा विश्वकप क्रीडायां स्वस्य प्रथमं विजयम् अभिलिखितम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी की जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18,880 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की, देश की चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बताया। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल होगी, पुख्ता इंतजामों के लिए आज देशभर में मॉक ड्रिल की गई। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल, राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबूराज में होगा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। किसानों को 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने ये सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने किसान कल्याण की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं।

0: रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि का राज्य स्तरीय समारोह पाली के सुमेरपुर में हुआ। पीएम किसान उत्सव से प्रदेश के 66,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 4,28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त हो चुकी है। योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पाली के नेत्रा में ग्रामीण सेवा शिविर का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण कर लाभार्थियों से फीडबैक लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने लोगों से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।
2: ग्रामीण सेवा शिविर ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि किसान, मजदूर, दिव्यांग, हमारी माता बहनें, हमारे बुजुर्ग, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसलिए हमने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर लगातार हमारे पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। इन सेवा शिविरों में ऐसे काम, चाहे वो शुद्धिकरण के हो, नामांतरण के हो, बंटवारे के हो, रास्ते के हो, पेंशन मिलती हमारे बुजुर्गों को वो किसी कारण से रुकी हुई हो, ऐसे कई तरह के काम हमारे इन शिविरों में होते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो।
1: देश में बने नौसेना के 3 जहाज INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का कल अनावरण होगा। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। नौसेना के अनुसार इन जहाजों के निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। देश की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में इनका अनावरण करेंगे। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की ओर से की गई समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। समिति के अनुसार इन दवाओं के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। इन प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारक और कुछ एंटीबायोटिक शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत की पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर हर नागरिक गौरवान्वित है। आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश के विश्वसनीय और नवोन्मेषी चुनाव प्रबंधन को वैश्विक मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान IDEA ने भारत को अध्यक्षता दी है।
3: भारत का हर नागरिक इस बात पर गौरव महसूस करता है कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि सबसे अधिक पारदर्शी, कुशल और सक्षम लोकतंत्र भी है। भारत की चुनावी प्रक्रिया में न केवल मतदाता सूची, बल्कि मतदान, मतगणना, इन सभी प्रक्रियाओं में राजनीतिक दलों का या चुनावी उम्मीदवारों का कॉन्करेंट ऑडिट अर्थात भागीदारी रहती है। हमने BLOs और BLO सुपरवाइजर्स के साथ संवाद किया, प्रश्नोत्तर हुए, जो हमने उनसे बात चुनाव आयोग की तरफ से कहनी थी, जो अपेक्षाएं थी वो बताई, जो उन्होंने विगत SIR में इतना अच्छा काम किया है उसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया और उनके प्रश्न और उत्तरों का जवाब भी दिया।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज सीतापुर स्थित JECC में प्रदेश के बूथ स्तरीय अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 12 राज्यों में हुई SIR प्रक्रिया में राजस्थान को पहले नंबर पर लाने में BLO की भूमिका की सराहना की। उन्होंने जमीनी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर BLO और सुपरवाइजर्स के सुझाव और अनुभव भी सुने। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। नीट UG 2026 परीक्षा कल दोबारा होगी। इसे देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आज मॉक ड्रिल की गई। परीक्षा को सुचारू, निष्पक्ष और

0: और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए ये अभ्यास किया गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुए ड्रिल में 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षाकर्मी शामिल हुए। एटीए के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा देश के 551 शहरों और 14 विदेशी शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के मद्देनजर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर लगाई गई रोक 22 जून तक प्रभावी रहेगी। इधर प्रदेश में री नीट पुनर्परीक्षा के लिए 25 जिलों में 577 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर करीब 2,09,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, एसओजी और आईबी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। साथ ही सीआरपीएफ की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर से 47 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमर जवान ज्योति पर हुए इस कार्यक्रम में 29 बसें राजधानी जयपुर और 18 बसों की सौगात भीलवाड़ा को मिली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ई बसों से प्रदूषण में कमी आएगी। श्री शर्मा ने ई बस में अमर जवान ज्योति से स्टेट हैंगर तक का सफर भी किया। गौरतलब है कि पीएम ई बस योजना के तहत राजस्थान को 1,150 बसें मिलेंगी। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 8 जिलों में 675 ई बसें चलाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कल बीकानेर दौरे का कार्यक्रम है। श्री वैष्णव लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे गुजरात और राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री दोपहर में जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वे जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये ट्रेन राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति देगी। श्री वैष्णव खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। श्री वैष्णव 41 छोटे और मध्यम स्टेशनों पर नए प्लेटफॉर्म विस्तार तथा 16 स्टेशनों पर एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर विकसित की गई यात्री सुविधाओं का भी लोकार्पण करेंगे। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। दुनिया भर में स्वास्थ्य और खुशहाली के माध्यम के रूप में योग एक उत्सव के साथ ही जन आंदोलन बन चुका है। इस बार 200 से अधिक भारतीय दूतावासों पर योग सत्र होंगे। राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शिरकत करेंगे। इस बीच आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि सरकार ने कार्यस्थलों पर योग ब्रेक के लिए वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है। आयुष मंत्रालय की ओर से विकसित इस मोबाइल एप्लीकेशन से काम के बीच 5 मिनट का योग ब्रेक लेकर लोग खुद को तरोताजा और तनाव मुक्त कर सकते हैं।
1: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: प्रदेश में सभी जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर योग कार्यक्रम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह सिरोही के आबूराज में रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयुष मंत्रालय की ओर से राजधानी जयपुर के जंतर मंतर पर सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। साथ ही एसएमएस स्टेडियम, एल्बर्ट हॉल, जलमहल सहित शहर के प्रमुख स्थलों पर भी योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली से 13 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100 दिन के काउंटडाउन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत प्रदेश भर में लगातार जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज डीग और जैसलमेर में योग जागरूकता रैली निकालकर निरोग रहने का संदेश दिया गया। सलुम्बर जिले में सरनी नदी को साफ करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी ने बताया कि सफाई अभियान में अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने नदी को साफ रखने और भविष्य में गंदगी नहीं फैलाने का भी संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात

0: कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 18,880 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जयपुर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। देश की चुनावी प्रक्रिया को विश्वसनीय और पारदर्शी बताया। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल होगी। पुख्ता इंतजामों के लिए आज देशभर में मॉक ड्रिल की गई। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबूराज में होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख लक्ष्मीचंद नागर ने तैयार किया है। वराह नगरी के नाम से प्रसिद्ध और राज्य के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित 12 जिले में कल 2 महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट यूजी पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी कल मनाया जाएगा। इन्हें लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय में 3, अंता में 2 और अटरू में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, यानी कुल 6 केंद्र बनाए गए हैं। जिला कलेक्टर बालमुकुंद असावा ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर भंवरलाल जनागल को, नोडल अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ कमल कुमार जांगिड़ को पुलिस नोडल अधिकारी बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी तैयारियां व्यापक तौर पर की जा रही हैं। सभी ब्लॉक्स में सामूहिक योगाभ्यास होंगे, इसे लेकर जिला कलेक्टर ने बीते दिनों बैठक की। इस अवसर पर योग दिवस के आधिकारिक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। बैठक में योग स्थलों पर पेयजल, चिकित्सा सुविधा, छाया और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, साथ ही अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जिले में इन दिनों ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने अंता तहसील की ठीकरिया ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी और विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा की। शिविर में आवासीय पट्टे वितरित किए गए, मंगला पशु बीमा पॉलिसियां सौंपी गई तथा विभिन्न प्रकरणों के तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी प्रदर्शित की गई। आगामी मॉनसून के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को अतिवृष्टि, जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ गंगा दशमी के अवसर पर मनिहारा तालाब पर हुआ। अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को जन भागीदारी के माध्यम से आगे बढ़ाना रहा। इसके तहत जल स्रोतों की सफाई, पारंपरिक जल संरचनाओं के संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की गतिविधियां शुरू की गई। इससे पहले श्रीराम स्टेडियम से प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें विद्यार्थियों, अधिकारियों और आमजन ने भाग लिया। हाथों में तख्तियां लेकर प्रतिभागियों ने पानी बचाने का संदेश दिया। इस दौरान जिला प्रभारी सचिव हरि मोहन मीणा ने कहा कि जल जीवन का आधार है और इसके संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने लोगों से जल स्रोतों की रक्षा करने, भूजल स्तर बढ़ाने और अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस अभियान का समापन हुआ। वहीं इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। इसके लिए जगह जगह विभिन्न कार्यक्रम रखे गए और पौधरोपण किया गया। साथ ही एक पेड़ लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, मतदान केंद्रों और सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाए गए। इसके साथ ही प्रतियोगिताओं और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। बीते दिनों जिला स्तरीय पर्यटन विकास समिति की बैठक हुई। जिले में पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों को मिलकर योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रामगढ़ क्रेटर और सोरसन क्षेत्र के अमलसरा स्थित टूरिस्ट क्षेत्रों को पर्यटन के दृष्टिकोण से और अधिक

0: विकसित करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। जिला परिषद सभागार में बीते दिनों नारी चौपाल और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इन सब गतिविधियों के बीच जिले में मौसम का भी मिलाजुला रूप देखने को मिला। कहीं तेज गर्मी से लोगों को परेशानी हुई तो वहीं आंधी और तूफान ने भी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। हालांकि इससे भीषण गर्मी से राहत मिली है और इस बारिश के बाद किसान अपने खेतों में खरीफ की बुआई में जुट गए हैं। 12 जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश रा 9,44,00,000 बत्ता किसाना रा खाता माए। पीएम किसान सम्मान निधि रा 18,880 करोड़ रुपया भेजा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार देश री चुनावी प्रक्रिया ने भरोसेमंद और साफ सुथरी बताई। जयपुर माए बीएलओ संवाद कार्यक्रम माए शामिल भया। नीट यूजी 2026 परीक्षा काल ओजूली जावेला। देश भर माए आज पुख्ता इंतजाम त्री परख करीची। और 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काल मनायो जावेला। राज्य स्तर रो कार्यक्रम आबू राज माए भेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश रा 9,44,00,000 उम्बत्ता किसाना रा बैंक खाता माए पीएम किसान सम्मान निधि री 23वीं किस्त रा तौरू 18,880 करोड़ रुपया उम्बत्ती रकम भेजी। पश्चिम बंगाल रा तारकेश्वर माए राखी जा कार्यक्रम माए प्रधानमंत्री आ रकम भेजी। ई मौके व किसाना रा भला रो सरकार रो संकल्प दोहरायो।
2: स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है।
1: पीएम किसान सम्मान निधि रा तहत रकम जारी करण रो राज्य स्तर रो कार्यक्रम पाली जिला रा सुमेरपुर में राखी चियो। पीएम किसान उत्सव रे जरिए प्रदेश रा 66,000 बत्ता किसाना रा खाता माए रकम भेजी जी। पात्र जनता रा बैंक खाता माए रकम भेजण री दुनिया री मोटी योजनावां माए शामिल पीएम किसान सम्मान निधि रा तहत हाल ताई किसाना रा खाता माए 4,28,000 करोड़ रुपया बत्ती रकम भेजी जा चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि रा तहत पात्र किसाना ने हर साल 6,000 रुपया री मदद दी जावे है। राज्य स्तर रा कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही शामिल फिया। इनु पहले मुख्यमंत्री पाली जिला रा नेत्रा माए लगाई चिया ग्रामीण सेवा शिविर रो जायजो लीनो। ई मौके वे कहो कि राज्य सरकार गांवाई हलका माए विकास सारू लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा जनताओं ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों रो बत्तों बत्तो फायदो लेवन री अरज कीनी।
3: ग्रामीण सेवा शिविर ये आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि किसान मजदूर दिव्यांग हमारी माता बहने हमारे बुजुर्ग उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आए, इसलिए हमने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर लगातार हमारे पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। इन सेवा शिविरों में ऐसे काम चाहे वो शुद्धिकरण के हो, नामांतरण के हो, बंटवारे के हो, रास्ते के हो, पेंशन मिलती हमारे बुजुर्गों को वो किसी कारण से रुकी हुई हो, ऐसे कई तरह के काम हमारे इन शिविरों में होते हैं। हमारी सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हो।
1: मुख्यमंत्री न्यारी न्यारी स्टॉल्स माथे सरकारी योजनावां रो फायदो लेवन वाला सागे बातचीत कीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो काल कोलकाता माए नौ सेना सारू देश माए बनाई जा 3 जहाज आईएनएस दुनागिरी आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय ने पानी माए उतारण रो कार्यक्रम है। आने समुद्री हिफाजत सर्वे और पनडुब्बियां रे खिलाफ न्यारा न्यारा अभियान माए काम लिया जावेला। नौसेना रे मुजब

0: और उड़ीक है मेरी बरसात यानी कि मानसून और मानसूनों जुड़ियोड़ो है आपनों किसान।
1: बिल्कुल सही कहा गुरविंदर भाई के सभी उड़ीक लगाए बैठा है मानसून री और जू आपने समाचार मिल रहा है कि मानसून आन वालो है अबे थोड़ा टाइम रे पछे लेकिन उनसु पहली सगला लोगा रे मायने वाजी की उमस है दो चार बोछार होगी तो उमस और ज्यादा होगी है उन उमस रे मैंने गुरविंदर भाई आपा थोड़ी सी चीज बताई सका कि उमस रे मायने आप हर चीज सतर्क रही जो जो आप पानी ज्यादा पीवनो है और कोई भी सांप पलेटो वे क्योंकि वे उमस रे मायने व्याने गर्मी ज्यादा लागे तो वे बारे जरूर निकलिया करे और वे आपानु डरे आपा वानु डरा।
0: बिल्कुल देखो कि कूल जो का है ब्लडेड जितना भी जिनावर है ठंडे रक्त रा वे गर्मी रे वास्ते बारे आवे और जिन तरह रा भाई मेंढक है या गांव रे मायने पल्ड है बा इन धरती रे गीली होने रे बाद उन नमी री वजह बारे आवे। तो देखो के आप बात करे हा मानसून री मानसून एक अनुमान है कि भाई बम्बई में मुंबई में आए पछे या गुजरात में प्रवेश करिए पछे राजस्थान में आउन में उन्हें घना दिन नहीं लागे। महाराष्ट्र में अगर आप मानसून रामचार होनो तो हाथ तिंदर उड़ीक रहे न गुजरात में आए पछे तीन या दो दिन में हो जावे। ये तिंदर भाई पहला तो कही है कि मौसम विभाग रे कने इतनी पुख्ता वैज्ञानिक प्रणाली कोनी ही तो भी वाणो जो भविष्यवाणी करता वह लगभग सही होती लेकिन आज कल स्थिति होगी है कि आपानो खुद रो मानसून जो को मौसम रो सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष में 24 घंटा घूमे वेरे अलावा कई देशारा इन तरह रा सैटेलाइट है जका बादला मुजब बरसात मुजब भाई आंधी है तूफान है कोई भी अड़ी प्राकृतिक आपदा है उवेरी जकी भी वा रीडिंग ट्रांसमीटर माते आवे तो उन्हें वे अभिव्यक्त कर दे। इन वास्ते बरसात रो सटीक जो को आंकड़ो और आकलन है मौसम विभाग करे है और जब भी समाचार में हुनो तो सावधानी राखनी सावचेती राखनी। ये तिंदर भाई बरसात रे मौसम में कई तरह री सावधानी राखा तो आपन ने नुकसान कम होवे।
1: बिल्कुल सही कहा गुरविंदर भाई सटीक तारी बात देखा आजकल तो सगला रे मोबाइल रे माते मैसेज आ जावे गुरविंदर भाई के दो घंटा रमाए बरसात आ जाए दो घंटा माए आंधी आ जाए तो मौसम विभाग अपन बहुत ऊंचाइया बुलंदिया माते पहुंचे है। और दूसरी आप सतर्कता की बात करी तो गुरिंदर भाई एक और बात बताई दू के अब बार देखो मच्छर कीट पतंगारो हो गयो है बे उमस और थोड़ी सी बरसात होगी नी तो शाम रा छह सात बजते ही आप रे वे फिड़कला लाइट रखने फिरे और आप रोटी नहीं खाई सको तो इन वास्ते एक और निवेदन कर दू सगला सु के सामरा सिंजारा लाइट लगाने सु पहली पहली आप भोजन कर ली रह जो क्योंकि लाइट रे वे उन रोशनी फिड़कला आवे और आप रे जी अगर खाना में आई गयो तो आप रे शरीर लेना देना पड़ जावे दूसरो इन्फेक्शन हो जावे तो सावचेती अपने राखनी जरूरी है।

0: भाई लोगा देखो कि मैं हूं पहला आंधी रो दो टोबी आवे न बरसात आवे, अचानक बरसात आवे तो दो तीन कि भाई अगर बिजली कड़के तो कोई दर खतरे नीचे नहीं उबनो, कोई खंबो है उरे नेड़ो नहीं जाऊनो, है नी। और अगर मान लो कोई तार है या कोई कठी हड़को फुड़को थाने आभास हो जा के भी लोरो खंबो है तो उरे नेड़ो नहीं जाऊनो, टाबरा नहीं बिजली रे झटकाऊ, सावधान राखनो। घरे में नहीं कठी कोई वायरिंग लूज है या कठी कोई तार ढीलो है तो उरे भी ध्यान राखनो, उरे टेम सर सही करा देनो। अमूमन आपा होना हा कि इन महीने रे महीने बिजली गिरनू, अकाल मौत हुए और बिजली की चपेट आने में कई टाबर मोटियार जका है वाणी अकाल मौत हो जा, तो भाई सावधानी हटी नहीं दुर्घटना घटी नहीं।
1: बिल्कुल सही कहे गुरविंदर भाई, सावधान हटी और दुर्घटना घटी। गुरविंदर भाई एक और मैं बात बताई दू कि जिका पुराना मान लो कोई पड़िया है मकान, तो आप उनरो थोड़ो सो ध्यान रख जो कि वो गिरन री स्थिति में तो नहीं है कि थोड़ो सो पानी पड़ियो और वो दो चार दिन की बरसात हुए वो पड़ जावे, तो उनसे पहले आप थोड़ो सो आगती पागती री नींगे रख लीजो, क्योंकि एक भाटो पड़े और नीचे कोई टाबरी हो या कोई भी आदमी बहतो हुए उन्हें भी लाग जावे तो अपन एक जिंदगी रो नुकसान हो जावे, तो अपन सावचेती रखनी जरूरी है। और बाकी बात गुरविंदर भाई बताई दी है।
0: देखो नहीं और देखो कि मैं आवे ना खंदेड़ा है नाडिया है बा में पानी री आवक एकदम बढ़ जा अठीने उमसरो मौसम वेन टावरिया कमीज खोलन बा खंदेड़ा में कूदे हिनान करन वास्ते, खंदेड़ा में वे चामी चामी वे चीकनी पग मान लो टाबर को पच गियो तो पाछो ऊपर बीनू आई जाई कोनी, तो एडे में तैराक बनने कोशिश जका टाबर करे बाने भी आप सावधान सावचेत राखो भाई खंदेड़े रे महीने पानी भेड़ो एड़ो है तो वे में कूदे नहीं, हो सके के खुले खंदेड़े में को तो चार पांच फुट है लेकिन थानी देखे पचे कणी माटी का आदली या दस बारह फुट यो टाबर कूदियो तो पाछो ऊपर थोड़ी आए, तो इन तरह की छोटी छोटी जकी बात है वे रो ध्यान रखनो बहुत जरूरी है। यतिंदर भाई सरकार जकी है चाहे वह राज्य री हो केंद्र री हो, अपने भारतीय जका 140 करोड़ लोग है बाने आगे बढ़ाने वास्ते छोटी छोटी सुविधा देने वास्ते 24 घंटा कार्यरत है। आ देखो कि आज दुनिया रे महीने आप चौथी बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनी, हाँ दुनिया री एक बहुत लूठी लोकतांत्रिक प्रणाली एक ताकतवर देश रे मुजब आपने गिनी जे है, तो कठे न कठे सरकार छोटे छोटे जो को कार्यक्रम है उन्हें सतत रूप चलायो और वे तमाम मानवीय विकास राज का कई कह भाई गुण है वाने आम जन तक पहुंचाउन रो प्रयास करियो। आज अगर आप देखा अंतरराष्ट्रीय आकलन में खास तौर माते वर्ल्ड बैंक रा जका आंकड़ा है भी में दिखाया है कि भारत रे महीने लगातार गरीबी रेखाओं नीचे रहनाला लोगारी संख्या में कमी आ रही है और अब लगभग 5% लोग ही गरीबी रेखा रे नीचे जीवन जी रही है। एक तरफ तो दुनिया में देखो कोरोना रे बाद आर्थिक तंत्र है वो डगमगा गयो, कई बड़ा बड़ा विकसित देश है जकी आर्थिक प्रणाली है जकी चकना चूर होगी, वहां लोगा रे वास्ते आ जो रोजमर्रा रा जका खर्चा काटना है वे दोरा हो गया, और तो और पड़ोसी देश जो को आपड़ो है जको बार आपा ऑपरेशन सिंदूर मुजब तगड़ो जवाब दियो, उठे 45 करोड़ लोग गरीबी रेखा रे नीचे जीवन व्यापन कर रही है, यानी तमाम जगह अपने अड़ोस पड़ोस रा देश है उठे गरीबी रो आंकड़ो बढ़ रियो है, और भारत जो को 140 करोड़ आबादी रो देश है अठे गरीबी रेखा रे नीचे जीवन व्यापन करने वालो आंकड़ो घट रियो है। आ चीज साबित करे कि आप विकास री और चाल रिया हाँ, और इन्हीं गति यानी 6.28% री जीडीपी हल्ली अगर आप जीडीपी राखी तो सन 2000

0: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
1: बिल्कुल गुरिंदर भाई के ओ भारत जी को देश है वो लाड़ला अबार 10-15 बरसा सु आप देख रहे हैं कि ऊंचाई अरे बुलंदिया माते चढ़ रहा है। चाहे आर्थिक हो, चाहे तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे सेना रो क्षेत्र हो, हर चीज में भारत आगे बढ़ रहा है। और इन माए गुरविंदर भाई हर चीज आपने आगे बढ़ाया है। जो आप देखा नहीं गुरविंदर भाई के पहले तो क्या था, बेरोजगार है, बेरोजगार

0: रोजगार है, लेकिन सरकार उन्हें पारदर्शिता भी करण लागे की कर के हगड़ा रो बैंक खातो खुलवाई दियो, उन्हें आधार रो लिंक करवाई दियो। तो अब कही एक बैंक रो खाता रो ट्रांजेक्शन वे जर ध्यान पड़े भाई इनका न कितो पे आयो और बेरोजगार है या नहीं है, तो अपने सामी वस्तु स्थिति भी आई है। तो उनसु अपन अपार देखण मैंने भी आयो कि लोग बहुत आगे बढ़ गया। और गुरविंदर भाई अपने सरकार मैंने आत्मनिर्भर बनाने पूरी पूरी कोशिश करी है सरकार के हर आदमी रकन ने खुद रो काम बे वो खुद री पहचान बनावे और उन रे वास्ते अनोखा अनोखा काम बतावे है योजना भी लावे है।
1: देखो भाई ढोलिए माते बैठे तो सरकार मुरिया दे कोनी, कोई
0: बिल्कुल
1: कहे के मार तो ढोलिए माते ही थाली आनी चाहिए तो वे तो घराला ही कोनी दे, वही कहे भाई हम कमाऊ ने जा। और जो की सरकारी नौकरी है चाहे राज्य सरकारी और केंद्र सरकारी वे सीमित अवसर है। तो अगर कोई ग्रामीण युवा पढ़ लिख ना हो छे के नहीं मैं तो सरकारी नौकरी करूं तो वो ये रो कोई लाइसेंस को नहीं, वह तो मेहनत और मेरिट माते निर्भर करे। लेकिन आज भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रेणीगत विभिन्नता आ गई कि कोई भी व्यक्ति कोई भी नौजवान किसी भी स्थिति में रोजगार हासिल कर सके। इतना तरेरा प्राइवेट सेक्टर आ गया, इतने तरेरी प्राइवेट चीजा आएगी जिमे सरकार पूर्णतः सहायता दे, लोन दे, आपने काम हिकावे, आपने पढ़ाई लिखाई करावे। स्वरोजगार एक सब मोटी जकी है ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर माते भारत रे प्रति लोग देख लिया कि किन कदर भारत स्वरोजगार माते जोर दे रियो है। आदमी तो आदमी अब गांव री जकी लुगया है, बाने भी रोजगार री सुविधा सरकार उपलब्ध करा रही है। इन मुझे मैं हुनियो के भाई जो को ड्रोन है उन ड्रोन ने जुई उई तादात बढ़ी तो गांव गांव ड्रोन ने ठीक करनो वाने देख रेख रख रखा वास्ते महिलाओं ने प्रशिक्षण देवन रखा कार्यक्रम भी सरकार चला वेला।
0: बिल्कुल सही कहे गुरविंदर भाई के सरकार कही है कि आपने योजना ला रही है उन दरमियान आपने सिखाने भी कोशिश करे और काम की कर हुएला। तो ड्रोन चलाने भी सिखावे उन साथ साथ आपने और भी सिखावे कि उन्हें ठीक किरकर करना है खराब हो गया तो या उन्हें कोई भी पुर्जो एक्टिविटी हो गयो या तार एक्टिविटी हो गयो तो उन्हें ठीक कर ठीक करना है तो उन सहायक रो प्रशिक्षण भी दिया करे। गुरविंदर भाई और 15 दिन रो प्रशिक्षण हुआ करे मैं जहाँ तक जानकारी ली हूँ उन मायने 5 दिन रो तो वो हुआ करे ड्रोन ने चलावन रो प्रशिक्षण पायलट रो और बाकी रजी का 10 दिन री ट्रेनिंग वे उन रे मायने उन्हें ठीक करना रो और उन रे मेंटेनेंस रे बारे में उन्हें सिखाया करे। और महिलाओं वास्ते एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है कि वे अच्छो रोजगार कमाई सके पैसा कमाई सके। इनसु कही है गुरविंदर भाई टाइम भी कम लगे और काम भी हो जावे। गुरविंदर भाई इनमें ने एक और बात बताई है कि आप ड्रोन ले लियो तो वो एक महिला नहीं महिला रो जिको समूह है नहीं गुरविंदर भाई उन्हें देवेला एक ड्रोन समूह रमाइने ताकि सगली महिला तैयार हो जावे और सभा ने रोजगार मिल जावे।
1: देखो भाई लोग गांव री जकी महिला है वाने ठा है के स्वयं सहायता समूह जो को बनायोड़ो वे गांव में आंगनवाड़ी में या अपनी ढाणिया रे महीने तो स्वयं सहायता समूह रे मुझे पहला सिलाई कढ़ाई री जकी है वह हिकावता सिलाई मशीन देवता और स्वयं सहायता समूह रे महीने आप थोड़ा थोड़ा रुपया भेड़ा कर उन समूह ने कहीं के लोनेबल भी बना सका, समूह ने श्रेष्ठ इकाई रे रूप में पहचान भी दिला सका और उन समूह रा जितना भी सदस्य है बाने वहां सबारो लाभांश भी मिले। तो अगर स्वयं सहायता समूह आगवान होवे एक वन अगर सरकार ड्रोन देवे तो वे ड्रोन ने चलावनो उन रख रखाव वे तमाम जानकारी जकी है जिन मुजब एक पहला क्या होता नहीं सिलाई कौन करे रहा मैं देखो घर घर सिलाई मशीन पूगिन लुगया आप रा गाबा तो हिड़े ही है हाथ अड़ोस पड़ोस रा भी गाबा हिड़े और वह अच्छो रोजगार वाने मिले।

0: यतिंदर भाई, देखो कि आज विश्व शरणार्थी दिवस है। शरण लेवन आला जका लोग है वह ने शरणार्थी के कोई भी युद्ध है जको कोई देश रमाते आवे तो उठेरा लोग जका है वे परेशान हो और पड़ोसी देश रमाई ने जावे। खास तौर माते अगर आप पूरे विश्व रो परिदृश्य देखा तो कई जगह आज की शरणार्थियारी जकी समस्या है, उनु अलग अलग देश है जका प्रभावित होया। अगर भारत रे परिदृश्य रमाई ने देखा तो 1971 रमाई ने बांग्लादेशी शरणार्थियारी जकी भरमार है वह पूरे भारत रे मायने होगी। क्यों के उठे जकी पाकिस्तानी फौज बांग्लादेशी लोगारे साथे वाणी लुगारे साथे जिन तरह रे अत्याचार करिया वह अत्याचार ने देखता थका लाखों तादाद में अठे आया और पछे आपानी जकी सरकार है वह सरकार हस्तक्षेप करियो और नयो देश बांग्लादेश बनवायो। तो इनी तरह जब कोई देश रे माते कोई युद्ध हुए या कोई आक्रमण हुए उठे लोगारी जकी परेशानी हुए तो उन परेशानी रे मुजब उठेरा लोग जका है दूजा देशा में शरण ले ले। हमें आज रे टाइम रे मायने देखा तो अब हर सरकार हर देश वो प्रयास करे कि उगे रे मायने कम कम शरणार्थी पहुंचे। यतिंद्र भाई शरणार्थी कठे न कठे उन देश रा जका संसाधन है उगे रे मायते हक राखन लाग जा पछे उगे देश री जकी कोई व्यवस्था है उगे ने बिगाड़न रो प्रयास करे, उगे री डेमोग्राफी है उगे ने बदलाव करन रो प्रयास करे। तो शरणार्थी समस्या बहुत बड़ी समस्या है और ये रो जू जू विकास री तरफ आप जा रहा है। भारत जिन तेज गति रे साथ विकास कर रही है तो इन तरह री समस्याओं निजात पाउन रा भी सब प्रयास कर रही है।
1: बिल्कुल गुरविंदर भाई, आप सही फरमायो कि सरना तरी समस्या घनकारी हुई रही है। इन खातर देखा कि गुरविंदर भाई दिसंबर 2000 माई ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और निर्णय लियो और शरणार्थियारी सहानुभूति खातर नहीं बल्कि व्याणे वापस पुनर्वास करवाई सके और उनारी सहायता करवाई सके इन वास्ते व्यवहारिक कदम उठाने के खातर इन दिन ने मनावने की घोषणा करी। और गुरविंदर भाई शरणार्थियारे साहस शक्ति और सम्मान रे मायने ओ दिवस आपा मनाया करा। इन रे मायने गुरविंदर भाई आ कोशिश रहा करे कि शरणार्थिया ने बुनियादी शिक्षा स्वास्थ्य आश्रय और सम्मान सु जीने रे अधिकार दिया करे। अब व्याणो भी ओ कर्तव्य बने कि मैं जिन देश में शरण ली हाँ उनरो कोई नुकसान नहीं करा।
0: मैं यतिंद्र भाई देखो अतई गणी होगी इन कार्यक्रम रो भगत हो रही है पूरा।

0: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक इफको।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: कुछ मोटी मोटी किस्म की आप बात करा तो मैं HHB 67 है, HHB 67 उन्नत है, RHB 121 है, ICMH 356 है, MPMH 17 है, MPMH 21 है, और एक साथ साथ कुछ किस्म जैसे RG 171 है, CZP 9802 है, MBC 2 है। तो ये आपकी मुख्य मुख्य किस्म है, और भी बहुत सारी किस्म। हाँ, ये बाजरी री है,
1: चौकी बाजरी,
0: चौकी बाजरी, शंकर बाजरी, मीठी बाजरी,
1: हड़क बाजरी,
0: बिल्कुल बिल्कुल साहब वो है
1: बाजरी।
0: हाँ, अब यहाँ में कही है बहुत सारी किस्म है जो कम पानी बरसे, मान लो मौसम नदों को दे दियो तो उनमें भी अच्छी पैदावार दे, तो वो सारी किस्म है जो अलग अलग नाम से जानी जावे। ये क्या
1: चौकी बताओ।
0: हाँ, इनमें सबसे बढ़िया जो किस्म है जो आपको बताइए, जैसे HHB 67 है, ये भी बहुत बढ़िया किस्म है, HHB 538 है, RHB 121 है, ICMH 356 है, ये सारी बढ़िया किस्म है जो अपना इलाका के लिए उपयुक्त भी मानी जाओ और काश्तकारों को बढ़िया फायदा दे।
1: राजस्थान
0: जी जी जी
1: तो बड़े हमें मूंगारी,
0: मूंगारी किस्म रही बात करा आपा साहब, तो मूंगा में सबसे जो आजकल किस्म चाह रही है सबसे बढ़िया जी, मैं RMG 62 है 62, RMG 268 है, RMG 344 है, MH 2-15 है, GM 4 है, GM 7 है, और एक MH 1142 करके किस्म आ रही है। यह भी बहुत बढ़िया किस्म है जो मूंग के लिए बहुत उपयुक्त किस्म मानी गई है।
1: डॉक्टर अशोक कुमार जी मीणा साहब
0: जी साहब,
1: आप RJ कहो, MJ कहो, GK बोकम कहते कोई है, कोई दूजी छोड़ रही है को?
0: हाँ, ये कुछ किस्म तो आपने राजस्थान से ही डेवलप करी हुई है, जिनमें आपने कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर से भी विकसित करी गई है, कुछ किस्म आपने कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा से विकसित की गई है, जो फसला की जहाँ डिमांड हो उन इलाका से वहाँ का कृषि जी साहब जी।
1: तो मेलान कटी दूजे प्रदेश रो कोई है बीज उगी काम रो।
0: नहीं साहब, ये किस्म यो अपना इलाका है पश्चिमी राजस्थान जहाँ कम बरसात हो उस इलाका के लिए ही उपयुक्त किस्म है जो आपको बताई, या मुझे जो भी किस्म आपको अच्छी लागे वो आप बो सके और अपने इलाके के लिए उपयुक्त मानी गई है।
1: ठीक है, मोटरी कौन कौन है?
0: मोट की बात करा आप जहाँ बहुत ही कम पानी हो तो मोट के लिए अपने जो सबसे बढ़िया आजकल की तारीख में जो अपना इलाका के लिए उपयुक्त किस्म है वो हमें है RMO 40, RMO 225, RMO 257, RMO 435 और एक CZM 2 और RMO 221 के नाम से जो किस्म आ रही है बहुत ही बढ़िया किस्म है और अपना इलाका के लिए उपयुक्त है।
1: चौका मोट,
0: चौखा मोट हो है बढ़िया, कम बारिश हो जी में भी अच्छी पाक है, मोटा दाना भी हो
1: तो पहुंच चुके।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
1: तो मैं है जो तिलरी कहीं है।
0: हाँ, तिल का बीज देखो साहब, अब देखो बात करा आप तिल की तो राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान के अलावा और भी प्रदेशों की बात करा, तिल पर सबसे ज्यादा नवाचार अपना ही प्रदेश में हो रहा और अपना ही जो सौभाग्य है अपना मारवाड़ में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर यहाँ से बहुत सारी किस्म तिल की निकाली है और किस्म में आप बात करा तिला में तो तिल की सबसे बढ़िया किस्म आपने देखभाल मिले तो RT 346 है जो राजस्थान तिल का नाम सो है, RT 125 है, RT 127 है, RT 346 है और एक अलावा साहब और जो किस्म है जो आपने सबसे ज्यादा लगा रहा है जैसे RT 351 और 372 जो अभी नई चाली है, 372 भी बढ़िया किस्म है और अपना इलाका के लिए सबसे बढ़िया पैदावार।
1: हाँ, यहाँ पर क्या काम लू चला,
0: बिल्कुल बिल्कुल साहब।
1: ग्वार
0: और ग्वार की आप बात करा तो ग्वार में भी देखो बहुत सारी किस्म आ रही है जो बहुत सारा कास का लगाव भी है और प्रचलन में भी है, वो भी थे भी नाम जानता होगा। ग्वार की आप बात कर ले तो ग्वार में सबसे बढ़िया जो किस्म है जी मैं RGC 936 है, RGC 102 है, RGC 103 है, RGC 1017 का नाम सुवारी है और एक RGM 112 जो अपना कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा डेवलप की गई है, यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया पैदावार देव है बहुत सारी।
1: हाँ,
0: और ये किस्म साहब ऐसी है इनमें कीड़ा बीमारी भी थोड़ा कम लागे है जो मुख्य मुख्य फसला है, मुख्य मुख्य रोग या बीमारी कीड़ा लागे उनके लिए भी उपयुक्त मानी गई है कि वह बीमारियां भी कम आवे कीड़ा भी कम लागे।
1: डॉक्टर अशोक कुमार जी मीणा साहब है बीज तो होगा
0: जैसा
1: नाम होगा
0: हाँ।
1: हम बीज बावना की गिरा बताओ।
0: अब बावना साहब जैसे ही आपके भाई फसल लगानी है कैसी लगानी है आपको गुआर बानी है मोठ बाणो है मूंग बाणो है तिल बाणो है तो पहले तो आप मानस बना लो।
1: हाँ
0: बाजरी बाणी है तो उसके हिसाब से आप मानस बनाओ और वहाँ के हिसाब से बीज की बुआई की तैयारी करो अच्छी।

0: प्रमाणित संस्थान जो कृषि विश्वविद्यालय थे जाना है, आजकल कई तरह का फ्रॉड हो रहा है काश्तकारा के साथ माथे, तो अच्छी प्रमाणित संस्थान से आप बीज खरीदो, वहां को पूरा पक्को बिल ले और उसके साथ साथ उसकी बिजाई करो। प्रमाणित संस्थान से ले हुआ तो आपके बहुत सी जगह बीजोपचार भी करे हुए आवे, क्योंकि बहुत सारी ये जो फसला है चौमासाड़ी यहाँ के अंदर रोग भी लागे कीड़ा भी लागे, तो इसके लिए पहली से बीजोपचार करबो बहुत जरूरी है। तो प्रमाणित संस्थान से ले हुआ थे तो वहां में बीजोपचार साथ ही होवे और बीजोपचार साथ करवा सो फिर आपको एक्स्ट्रा बीजोपचार करवाए की जरूरत कौन पड़े।
1: बस बावनी है तो बस कितना आंगन में है जित बावनी
0: से। अब माँ आंगन तो है, देखो आपकी थोड़ी सी धपन है जो गर्मी बोले जमीन की, वह गर्मी निकल जाओ थोड़ा वातावरण में नमी आ जाओ है, आपका 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान हो जाओ है, बारिश की आपने एक दूंगड़ो हो गयो, फिर उसके बाद में ठीक है 2-5 दिन में और संभावना बढ़े है तो टाइम आप भी जाए कर सके। और ये ऐसी फसला है जो लगभग बरसात के ऊपर ही डिपेंड रहे, कुछ किस्म अलग अलग है जो अलग से पानी देवा की जरूरत पड़े।
1: देखो कुदरत कोई भरोसा,
0: हाँ
1: थोड़ी हो जा
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बीज गल जा
0: बिल्कुल साहब बिल्कुल बिल्कुल
1: साहब मौसम ने देख करो।
0: हाँ
1: मूंगफलियाँ क्या कह रही है तो हुआ
0: मूंगफली भी साहब बहुत बढ़िया है, बहुत सा इलाका में मूंगफलियाँ भी ले रहा है और मूंगफलियाँ में अलग अलग तरह की आवे साहब, एक तो फैल और बोवाड़ी फैल वाली मूंगफली हो है, एक गुच्छादार मूंगफली हो है, तो आप कुछ किस्म की बात कर ले वहाँ में जो फैल वाली हो है तो वह M13 नाम की जो किस्म है वो फैल वाली वो किस्म है, इसके अलावा जो कम फैल वाली मतलब थोड़ी सी गुच्छादार किस्म हो है तो वह है HNG10 है और GG20 है, जो गुजरात की किस्म है GG20 वह है। और गुच्छा वाली किस्म की बात करें जो पूरे गुच्छो बने बंच बने है वह किस्मान में TG39 है, TG37A है, गिरनार 2 है, RG425 है, वह HNG123 जो किस्म है बहुत ही बढ़िया चाल रही है गुच्छादार वाले किस्म
1: करें। हाँ जी बात है
0: जी जी, जी।
1: भाई थोड़ा घना जागरूक रहो हिसाब लाओ
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आप तो कह नहीं भाई है जो कह नहीं खास जानकारी रखो नहीं डॉक्टरी करियो
0: जी जी जी,
1: तो आप रही हो है सरकार रही हो है भाई काश्तकार है लेकिन ज्यादा ज्यादा फायदो
0: है साहब,
1: देश उत्पादन बढ़े थे ठीक है
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और आप तो हमें कह नहीं की भाई 365 दिन खपत करो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: बा खपत है जो भाई है जो कह नहीं की भाई कामयाब हो जा
0: जी जी,
1: तो हैंग फायदो ही फायदो है, भले कोई खास बात आप बताओ।
0: खास बात तो यही है साहब आप समय पे बीज लाओ और बीज उपचार को जरूर सुनिश्चित करो, क्योंकि बहुत सारी फसलां हैं ये सारी फसलां जो था बताई यहाँ में बहुत सारी बीमारियां लागे, तो बीमारियां के लिए आपको पहले से बीज उपचार करके बुआई करनी जरूरी है
1: तो
0: क्योंकि जैसे बार
1: बीज
0: उपचार उसमें दवाई मिलानी है साहब बीमारी के लिए, जैसे मूंगफली की आप बात कर ले तो मूंगफली में एक जड़ गलन बीमारी लागे जिसको माँ की भाषा में मूल संधि विघलन रोग बोला है या देसी भाषा में कालर रोट भी बोला है, और इस कालर रोट बीमारी में काई है साहब बीज के द्वारा भी आवे और आपकी जमीन के द्वारा भी आओ, तो इसमें बीजोपचार जरूरी है, तो बीजोपचार के लिए कार्बोक्सिन प्लस थायराम है या कार्बेंडाजिम है या बहुत सारी दवाइयां हैं,
1: पहले इलाज है
0: हाँ पहले इलाज रख ले, अगर आप प्रमाणित संस्थान से बीज ला रहे थे बीजोपचारित हो रखे है तो बीजोपचार की जरूरत को हाँ उगे थैली के माथे लिखेड़े हुए है और लाल लाल सी दवाई कलर से देख को मालूम चल जाओ कि मैं बीजोपचार किए हुए हो, तो बीजोपचार की जरूरत कौन है, अदरवाइज आपको बीजोपचार नहीं हो रखे है तो ये जो दवाइयां बताई है यहाँ की आप 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज में मिला और उसको बीजोपचार कर दो।
1: नकली बीज ही घने आवे हमारे है जिको कह नहीं बे बाबू है जी घने पकड़िया है
0: बिल्कुल साहब, देखो बहुत सारा है आजकल मार्केट में सब कंपटीशन हो गया कि तरह का फ्रॉड लोग आ गया है, तो काश्तकारा से भी बेईमानी करवा सो न चुके, तो उसके लिए यही बार बार सलाह दी जाओ साहब आप जो भी प्रमाणित संस्थान है जो आपको बताया जहाँ कृषि विश्वविद्यालय है कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ का
1: सरकार
0: हाँ और RSC है NSC है तो वो भी आप बीज प्राप्त कर सके वहाँ से।
1: वाह शाह वाह डॉक्टर अशोक कुमार जी मीणा साहब आप है जी को मारी डाणी आया मारे गांव में आन है भाई सणा ने है जी को चौमासेरी खेती रा सोखा नवड़ा बीजा बाबत जानकारी दी आपने बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद साहब नवलाबा साहब धन्यवाद
1: धन्यवाद साहब राम राम
0: राम राम साहब राम राम।
2: बताया साहब, बताया बीजा के बारे में, बताया कृषि के बारे में बताया, और उन्हें जो अगर कोई कृषि कीटनाशक को खराब हो जावे तो उन्हें बचाव रहा उपाय भी है बताया।
1: हैंग बता दिया, हैंग बात भली हो।

0: इनका नहीं कि अल्लाह ईश्वर गणे में बराई
1: बरसाई साहब
0: और
1: बरसाई।
0: बीज लान तैयार कर दो नहंग बाता हो जी और मैं हूँ विगत बार वो बताओ को नहीं मैंने कौन जलमियान कौन फोत होया
1: नौ लोबा विगत बार मैं आपने बताऊं कि कौन जन्मिया कौन फोत होया उन पहला मैं आपने बताऊं आज जो को दिन विशेष है जो को विश्व शरणार्थी दिवस।
0: ओ ठीक है कर शरण में कटी जावे जा।
1: हाँ हाँ शरणार्थी रो मतलब वो है नवलोबा के कोई आप रो जो को घर बार छोड़ आप रो शहर छोड़ और आप रो देश छोड़ने किनी और शहर या किनी और देश जावे तो वो वोटे रो शरणार्थी होवे नवलोबा।
0: अरे हम गाँव देखो कटी कोई खटपट हो जा कोई दंगा फसाद हो जा कटी कोई अड़ी कोई बातड़ी हो जा तो रातों रात नहाणो पड़े सा
1: नहाणो पड़े
0: हूँ तो छोटो खो जद अपने एक आंगणे रा दू आंगणा देश रा होया
1: होया नवलोबा
0: जदा टी रा मिने कुटी गया नूटी रा मिने कटी आया
1: आया सा नवलोबा।
0: बात मन याद है पर वो तो बड़ी कह नहीं याद वो कह बड़ो दुख रो बात बतरा है
1: और दुख रो मकाम भी है नवलोबा और दुखरी बात भी है के जो को अबार भी देखो आप जो को युद्ध चले वैश्विक युद्ध पूरे विश्व में देखो युद्ध चल रहा है और उन युद्ध के कारण जो को है नवलोबा कई जो को आम आदमी है और आम नागरिक है वे जो को आप रे देश छोड़ने दूसरा जो को शांति वाला देश है वोटे जान आप रे शरण लेवे है।
0: आई देखो भाई नीति है वो के कोई अगर जुल्म अत्याचार घणो हो तो पछबे देखो आवे कैद बान शरण तो देनी पड़े
1: और वाणी जो को नागरिक जो को शरण ली है नवलोबा और वाणी जो को सुरक्षा की कर सका हाँ और वापस जो को वाने देश में ले जान की कर बसा सका हाँ और शांति स्थापित की कर सका आप उन वास्ते जो को दिनड़ो बनाया जावे
0: मिनक मिनक बड़ा रो दिन
1: है ऐसा नवलोबा
0: के बाने आवे जब तंबूड़ा में रखे खाना दानो देवे काम धंधो बतावे
1: बतावे सा नवलोबा
0: ता है साहब अद कह नहीं भगवान मालिक कहो कि नहीं नहीं देखनो पड़े
1: नहीं देखनो पड़े
0: पर मैं कहो है कि भाई मारे हुन नैन पड़े में देखियो नहीं जद अटू छोड़न के लाहौर गया परा मारे एक है जो खास दर्शो थो इब्राहिम खान मैं बड़े ताज मोहम्मद ने उठ गया पर भाई देखो उन टाइम मारे आज तक नहीं मन में बहुत हूल है जो सुबह
1: नवलोबा देखो के भाई अपने और घर छोड़ना री जो को व्यथा है वो आपने जो को हिंदी साहित्य देखा के उर्दू साहित्य देखा उमे भरियोड़ी पड़ी
0: मैं बात बात बतल बताओगा नहीं मैंने कौन जलमिया कौन बहुत होया
1: बताओ नवलोबा हेंगू पहला आज जो का जन्म दिवस है अपने राष्ट्रपति और महामहिम जो को है द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ आज जो को जन्म दिवस है जो को अपने 20 जून 1958 मयूर भंज उड़ीसा में जन्मे हा नवलोबा और अपने जो को भारत री पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति है।
0: हाँ जी बात है देखो आज कहूँ कह बूटान राज में इतनी मोटी बात है
1: बात है सा नवलोबा
0: और क्या नहीं बनवासी हो चाहे भली आदिवासी हो चाहे भली मूल निवासी हो चाहे भली कटेगरी
1: संविधान की मोटी बात है
0: कानून में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देन गया तो ते मोटे ओदे माते पूगा है अरे आप रो काम काज सोको करे है
1: करे न
0: भगवान ने हजत हजा रखे निरोगा रखे इन सो का काम करता रहे मुबारकबाद है
1: बिल्कुल भले मैं आपने बताऊं आज जो को जन्म दिवस है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी रो ऐ जो को अपने गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे है नवलोबा ऐ जो को अपने एक भारतीय कवि संपादक और आलोचक है नवलोबा और अपने जो को साहित्य अकादमी ही उन्हें पूर्व अध्यक्ष भी रहे है और आप हिंदी साहित्य में जो को है आप संपादन में और दूसरी चीजा में 50 ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित करी
0: पोतिया लिखनी कह नहीं पसा पाना लिखने में
1: जोर आवे सा नवलोबा
0: और पसा पोतिया लिखनी है जो कितनी मोटी बात है भगवान हजरत आने चौकी पोतिया लिखता रहे
1: बड़े मैं आपने बताऊं नवलोबा आज जो को जन्म जयंती है भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव जी री है अभी अपने जो को हिंदी रा प्रसिद्ध लेखक और कवि होया है और अब जो को रिवायती और परंपरा चली आ रही थी साहित्य में उन्हों हटने है काम करी
0: वाह तो नियाल कर दिया अन्य है जो को हमें कहूँ
1: मनडेरा फूल चढ़ा बड़े मैं आपने बताऊं एक कुशल पत्रकार होया है गौर किशोर घोष जी वाणी भी आज जन्म जयंती है वह एक कुशल पत्रकार तो हाई हा नवलोबा हाथे हाथे एक लेखक भी हा और अपने एक प्रगतिशील लेखक है जो को एक मोटी पत्रिका ही आनंद बाजार पत्रिका उमे जो को वरिष्ठ संपादक भी रहे हा और अपनी जो को पत्रकार पत्रकारिता रे जरिए याने जुको है रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिलियो।
0: ओहो जग चावा काम करिया तो आने है जुको कोई नहीं भूल सके। आ है जुको कह नहीं कमलड़ी रा फूल।

0: भले मैं आपने बताऊं लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर जी के बारे में। ए अपने जो को बेलगांव मैसूरू तालुक राखता नवलोबा और अपने जो को भारत रा प्रसिद्ध उद्योगपति हूं एक हा और अपने जो को किर्लोस्कर उद्योग समूरिया स्थापना करी ही।
1: ओ ए पंप बने हो?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मैं मन है था ए पंप ए जो वाला नाम रा घणा होवे।
0: पंप बनाया और साइकिल रा मोटा काम करता है।
1: हां तो देखो देश ने क्या तरक्की की गति दी तो एड़ा बिरला मिनका ने कोई नहीं भूल सके। कोटि कोटि नमन है मंदेरा फूल चढ़ावा। भले
0: भले मैं आपने बताऊं आज पुण्यतिथि है वेंकटेश नारायण तिवारी जीरी। ए अपने नवलोबा कानपुर में जन्मे है और हिंदी रा जो को ध्वज वाहक पत्रकार और साहित्यकार रहा। ए अपने जो को हिंदी भाषा रा बहुत मोटा जो को पक्षधर रहा। हिंदी भाषा ने कटी झुकण नहीं दी है।
1: हां सर देखो कह नहीं झंडो ऊंचो राखियो
0: और जो को साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी है। गोपाल कृष्ण गोखले जो को संस्था ही भारत सेवक समाज उन्होंने आजीवन सदस्य भी है।
1: हाँ तो देखो क्या देश की आजादी की टाइम ऐसा काम करिया और चौका मिनका ने तो कह नहीं पर बात पर ढोक देवा कोटी कोटी नमन करा मंदड़े रा फूल चढ़ावा। ओ वसीम भाई थे वो एक कह नहीं वो शरणार्थी वाली बात करी
0: करी करी नवलोबा
1: शरणार्थी आलो कुछ गीत सुनाओ।
0: उन्होंने नवलोबा

0: वह दो आंकड़ी होनी मारो जीव हो रोग और बीज बाबत आपने हैं जानकारी दे दी और हमें देखो सही सौ का बीज लाओ सौ की खेती करो और है जो मेरी मारे है जो खेती की खपत करो
1: करा नो
0: और हमें थे लो एक कांदा है थोड़ा बांट दो और लसन सोल दो और पद है जो रसोड़े में है जो पुगा दो जो आप रसोड़ो तैयार हो जी
1: हो जाए ना बोला
0: और वो फेर लो माला थान पड़नी वे नमाज तो थे थारो विचार कर लो और हमें देखो क्या है बात भली हो सब रह कह नहीं की मालिक सो कोई करी
1: करी ना
0: और हमें दिन बद को है तारा ऊंचा आएगा है
1: आएगा ना बोला
0: और अंधारियो पड़गो है प्रोग्राम रो टाइम होगो पूरो तो भाई से ले वही
1: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सुने पहला गीत साक्षी गोपाल फिल्म से।

अभी हमने सुना साक्षी गोपाल फिल्म से ये गीत, जिसमें आवाज़ थी मन्ना डे की और शब्द थे भरत प्यास के, संगीत था चित्रगुप्त का। और आइए सुने अगला गीत रविंद्र जैन की आवाज़ में, उसे लिखा भी रविंद्र जैन ने है और फिल्म का नाम है नदिया के पार।

अभी आपने सुना रविंद्र जैन के गीत और संगीत निर्देशन में बना गीत, जिसमें आवाज़ थी चंद्रानी मुखर्जी, जसपाल सिंह और हेमलता की। आइए सुने अगला गीत मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है उजाला।

अभी हमने सुना मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में ये गीत, जिसके गीतकार और संगीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम था उजाला। आइए सुने अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है पतंगा।

0: ये गीत हमने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम था धर्मात्मा।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
0: कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत। और फिल्म संगीत में आइए सुने अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है उपहार।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित
3: कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत, और आइए फिल्म संगीत में सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र और फिल्म का नाम है संगम।

आइए सुने अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली।

आइए सुने फिल्म संगीत में अगला गीत। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार क्षमा कीजिए गीतकार हैं फारूक कैसर, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है लोहा। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की।

फिल्म संगीत का ये आखिरी गीत हमने सुना लोहा मूवी से, और इसी के साथ आज का ये फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुने सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम सुनेंगे राहत फतेह अली खान की रचनाएं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। हमारे अगले कार्यक्रमों की श्रृंखला हम हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई

राजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीम शान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बना
0: और दूसरा गाना था

0: 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन टिक धिक धिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

चूंकि यहाँ हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया, तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती। सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे।
1: रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला
1: जो तुम तोड़ो पिया, मैं ना ही तोड़ूं रे जो।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

0: आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नकद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। वीआर, एआर, एक्सआर और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं,

भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की।

0: जानवर
1: मेरे संग कोई गीत सुहाना मेरे संग
0: और राजकुमार
1: हम चले आए जान हथेली पर ले आए रे।
0: सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से

हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहाँ जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर आ जा रही थी बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया,
2: फिर कोई
1: फिल्म सूरज।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देशभर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग।
4: जिसकी भूल है चलो रे माई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
5: डॉक्टर विवेक कर्महे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू

0: श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektaal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektaal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार।

0: होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब समाप्त होती है। कल सवेरे 5:55 पर हमारी पहली सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: rainfall over Assam and Meghalaya for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब समाप्त होती है। कल सवेरे 5:55 पर हमारी पहली सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।